तोरी साहिब हो दयाल कृपा करता सहकार कराईसी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाएसी हुक्म मनिए होवे परवाता कसमै का मल पाएसी कसमै पावे सो करे मनु चुंदिया सो।

ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ।

थोड़ी आप ही करना पियो कला पे ही तारी है, देखे किता अपना दर कची पकी सारी है, जो आया सो चलसी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है के उसाई मनोवसारी है, अपन हती अपना आपे ही।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कंवरराम साहिब जे सदावार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ कालूराम ऐं साथियुनि पारां उमर मारवी खे ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त असां भगत कंवरराम साहिब जे सदावार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

0: दरवेशर हो जाए छो
1: उन्हें गोले लाल के लथो
0: जे लथो त बीवाई भी कान क्यों
1: चवन ता साई का वदी काई शे ही ना है
0: एक बार में यार जो जलवो जह दिठो न
1: उन्हें के अबा खबर हुंदी
0: बीवाई कान क्यों
1: वाह वाह
0: दाता चवन फकीर हे शाह लतीफ चे थो
1: पेंजे पानी जे अंदर

तां भगत कंवरराम साहिब जी जो सदाबहार आवाज़ ॿुधी रहिया हुआ। हीअं आकाशवाणी जी सिंधी सभ्यता आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। भारत श्रीलंका जो वेझो पाड़ेसरी मुल्क आहे। ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में लाॻापा 2500 सालनि खां वधीक पुराणा आहिनि। ॿिन्ही जे विच में तहज़ीबी ऐं इतिहासिक मज़बूत लाॻापा हिक ॿिए खे गॾनि था। श्रीलंका खे भारत जी पहिरीं पॉलिसी ऐं महासागर मर्कज़ी हैसियत हासिल आहे। हिन बेतरफ़ी लाॻापनि मज़बूत ऐं जुदा लाॻापा आहिनि, जेका मौक़ा मुताबिक सभिनी खेत्रनि में शामिल कनि था। ॿिन्ही मुल्कनि जे गॾियल सांस्कृतिक ऐं समाजी वरसे ऐं हिननि जे नागरिकनि जे विच में हिक माण्हू खां ॿियनि माण्हुनि जो राबितो हिकु व्यापक भाईवारी ठाहिण जो बुनियादु अदा कनि था। भारत रवायती तौर ते श्रीलंका जो सभ खां वॾो वापारी भाईवारनि मां हिकु रहियो आहे। माली साल 2024-25 में भारत ऐं श्रीलंका जे विच में वापार जो अंदाज़ 5.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रहियो, जंहिं में भारत जो एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर ऐं श्रीलंका जो एक्सपोर्ट 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर रहियो। मौजूदा माली साल 2025-26 अप्रैल खां जनवरी जे अरसे में ॿिन्ही तरफ़ां वापार 5.54 बिलियन अमरीकी डॉलर रहियो, में भारत जो श्रीलंका ॾांहुं एक्सपोर्ट 4.26 बिलियन अमरीकी डॉलर आहिनि। भारत श्रीलंका सां गॾु इकोनॉमिक ऐं टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पूरो करण लाइ वरी ॻाल्हि ॿोल शुरू कई आहे, जंहिं में शयूं ऐं सेवाऊं शामिल आहिनि। श्रीलंका सां गॾु भारत जो वाधारो वारो सहकार असांजो ॿिन्ही तरफ़नि जे लाॻापनि जो सभ खां अहम थंभनि मां हिकु आहे। भारत जे श्रीलंका खे कुल कर्ज़ जी मदद 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर खां वधीक आहे, जंहिं में 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर एमरजेंसी मदद ऐं ग्रांट मदद शामिल आहे, जेका हाणे लॻभॻ 850 मिलियन अमरीकी डॉलर आहे। भारत श्रीलंका जे 25 ज़िलनि में आम माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾियण वारा प्रोजेक्ट हलाए रहियो आहे, जंहिं में सिहत, रोज़गार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे शामिल आहिनि। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला चयो त भारत ऐं श्रीलंका जे गहरे तहज़ीबी, सांस्कृतिक ऐं अध्यात्मिक लाॻापनि सां गॾियल आहिनि, जेका सदियुनि खां वाधारो करे रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि जे गॾियल वरसे जो हवालो ॾींदे हुन चयो त भारत ऐं श्रीलंका जे विच में इहे जोश वारा ऐं भाईवारा लाॻापन बुनियादु ठाहिनि था। श्री ओम बिरला इहा ॻाल्हि 11 मई 2026 ते पार्लियामेंट हाउस में श्रीलंका जे काकस सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो। श्रीलंका जे प्रतिनिधि मंडल जी अॻवानी में श्रीलंका सरकार जे जालुनि ऐं ॿारनि जे मामलनि जे मंत्री मिसिस सरोजा सावित्री पालराज करे रही हुई। श्रीलंका सां पंहिंजे ॻाल्हि ॿोल खे यादि कंदे श्री एस एम मारेकर, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी, ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में वधंदड़ आदान प्रदान ते संतोष ज़ाहिर कयो। हिन चयो त पार्लियामेंट मेंबरनि जे विच में ॻाल्हि ॿोल लाॻापन जे करे भारत श्रीलंका जे आप समझ खे मज़बूती मिलंदी। भारत जे लोकशाही ढांचे में औरतुनि जे वधंदड़ योगदान ते ज़ोर ॾींदे चयो त औरतूं हाणे गवर्नेंस ऐं मुल्क जी तरक़ी जे हर क्षेत्र में पंहिंजो योगदान ॾींदियूं आहिनि। चूंड प्रक्रिया खां वठी नीति निर्माण कार्य में अॻवानी जी भूमिका ताईं योगदान ॾियनि थियूं। हिननि अॻियां चयो त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो पको विश्वास आहे त औरतूं विकास लाइ अॻवानी कनि थियूं त समाज वधीक समावेशी ऐं टिकाऊ थिए थो। श्री ओम बिरला अॻियां

0: गयो तो भारत में नए संसद भवन में पहले कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो जेको लोकसभा ए राज्यसभा में औरतों लाए 33% रिजर्वेशन के जरूरी करार दिए थो। इन कानून के एक ऐतिहासिक कदम बुधायो वयो। भारत जे लोकशाही ढांचे जे मजबूत बुनियाद ते जोर दींदे श्री ओम बिरला बुधायो तो भारत जे केतरन ही रियासतन में खुद सरकारी संस्थाओं में औरतों लाए 50% रिजर्वेशन लागू कयो आहे। नतीजे तौर 1.5-4 मिलियन का औरतों इन लाए अगवानी कन थियूं। इन वक्त मुल्क में पंचायतों ए शहरी संस्थाओं में सेवा करे रहियो आहिन जेका सरकार ए कम्युनिटी डेवलपमेंट में अहम योगदान दई रहियो आहिन।
1: तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे प्रोग्राम कालूराम ऐं साथियुनि पारां उमर मारोई। अचो त ॿुधूं उमर मारोई खे।

0: अज मारी उमर बादशाह जे कोट में बंदिया ओ भलो
1: आई मारन के याद करे अखन मां पानी आने पई रोए
0: उमर बादशाह मथे चढ़ी आयो आ
1: देखई त मारवी के अखन में पानी आ
0: अरे मारवी रोई छो थी
1: मारवी चे थी उमर बादशाह अन्या अब न रुआ
0: मुझे रोणा दी खबर पूछी मुखा
1: ता

0: बारी जी थुमर बादशाह
1: बुद्ध
0: तू मुखे खुआता खणी आए
1: काबू कई कोट में
0: मुजा मारू तो छोड़या
1: हां
0: पर याद रख जा
1: बुद्धि छड
0: अज दी ते उन्हें मारन दे लाए
1: मुजी तली ही थी चवे
0: कदे थी
1: त

0: बादशाह जो तो मारी याद रख जा
1: चाहिए दे
0: अरे एडो रोए बादशाह
1: देसा सही
0: हे तो लाग है
1: हे तुम जला रेशमी वस्त्र है
0: ई है पाए
1: कीता मत तरह तरह जाया थे
0: मारी की थी उम्र जे मुखा पूछी
1: मां तुजे ने तामन के छा करया
0: ओए मुजु साहेड़ियो
1: शर्तियो एक जे दियो
0: ओए मुजा मारवाड़ा मुख याद था
1: ओए वाट निहारी
0: दियो।

0: महाराज साईं
1: साईं मुंजा
0: मारी रोई करे
1: ए बादशाह के चले थी
0: आखरी पंजे में हथ बधी कर उमर बादशाह के जी इतनी बड़ी मेहरबानी थी दी मुखे वापस पहुंचा
1: मुखे पंजे मारन सा मिला है
0: जदा को दरवेश आ यक्तार हथ में
1: वजाई तो अच्छे
0: थोड़ी मारवी
1: गाल त बद
0: चिंता न कर
1: ख्याल न कर
0: और रखो।

0: भगत साहब कंवरराम साहब जे लाए महापुरुषन ॿुधायो हिन उहा कमाई कई
1: हिन उहा निष्काम शेवा कई
0: भारत जे कोने कोने में यार जूं वर्सियूं लॻनि
1: मेला प्यार लॻनि हीअ कमाई मुंहिंजे साईं कंवर राम जी
0: महाराज साईं कांग वेठो आहे मथे
1: हेॾां कवि लिखे थो
0: हथ ॿधी हुन कांग खे चए थो यार संत खणी वञ
1: इहो नियापो खणी वञे

तो सोरठ पारा भगत घनश्याम पारा बुधी रहा हुआ हीर पेश आए खास खास खबरों। आज नई दिल्ली में बाहरें मंत्री जो बिन डीएन जो सम्मेलन चालू थी रो है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंज मुल्क के दौरे ते अज आबूधाबी वेंदा। रशिया भारत के वादो कयो आहे त उहां पंहिंजा सब ग्लोबल चिंताओं जा वादा पूरा कंदा। इज़राइल के जे प्राइम मिनिस्टर जे ऐं यूएई जे राष्ट्रपति बिनी गोपने मीटिंग ते में ईरान जे विवाद बाबत कई वेंदी।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हुआ। ऐं हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसिताईं ॾींदमि मोकल सदाईं गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित

इसी के साथ आज का संगीतिका कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ की आवाज़ में भजन। तबले पर संगत कर रहे थे सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गुनगुनाती सुबह ने दस्तक दे दी है। बहुत ही सुहानी सुबह है और एक नई शुरुआत, एक नए दिन की, और यूँ कह के अपने जीवन में एक और पन्ने को लिखने की और इस कार्यक्रम को भी सुनने की। जी हाँ, आज फिर इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत होंगे और बहुत सारी बातें आपसे करने का मन हो रहा है, पर बातें करेंगे तो कैसे चलेगा, गीत भी होने चाहिए। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत हेमलता की आवाज़ में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और गीतों भरी गुड मॉर्निंग में एक और प्यारा सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में सुनते हैं।

बहुत ही प्यारा गीत सुरीला सा, अभी तो जी लेने फिल्म से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग तो आप सबकी भी हो ही गई होगी, ऑफिस जाने की तैयारी शुरू हो गई होगी, जो भी जिस काम को करता है उस काम में लग गया होगा। और जो नाइट शिफ्ट में है तो उनके लिए हम क्या ही कह सकते हैं, उनकी सुबह तो बाद में ही होगी। और बहुत सी बातें तो हो ही रही हैं, गीत भी चल रहे हैं और बहुत सी बातें, हमारा दिल कहता है कहने का कि आपकी भी दिन की जो शुरुआत है बहुत अच्छी हो, बल्कि पूरा दिन अच्छा जाए और एक और पॉजिटिविटी के साथ आप उठें और अपने काम को करें। और क्यों कहें शाम के वक्त कि वाकई दिन सुहाना था। और इस दिन की जो शुरुआत है बहुत प्यारे प्यारे गीतों के साथ आप जो सुन रहे हैं उसके साथ हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा उम्मीद करते हैं आपसे। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई आप लोगों से मैं बात कर पा रही हूँ और प्यारे प्यारे गीत सुन रही हूँ बहुत ही सुरीले कार्यक्रम गीत तो भरी गुड मॉर्निंग में। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि अब कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त भी आ चुका है, और मुझे यानी शोभा को इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। पर जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा गीत आपके इंतज़ार में है। और दोस्त, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर सुबह आप कितनी सुहानी हो कि कोई भी गम आपको याद ना आए, और बहुत ही खुशियाँ हों, नया दिन यूँ कहें नई शुरुआत लेकर आए, और बहुत ही प्यारा पॉजिटिवली आप जाएं और सब काम आपके होते जाएं। तो बस इस तरह से आपके सब काम होंगे और आप एक ऊर्जा से भरे होंगे तो वाकई दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इसी दुआ के साथ मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, पर जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा गीत आपके इंतज़ार में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री

0: ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के

0: आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र, समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच, कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपए बढ़ाकर 2,441 रूपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक

0: Finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितम्बर 2025 को अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाज़े किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक

0: गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात खपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को ख़त्म कर दिया है जिनका सबुकतोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने ज़रई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। ज़रई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलो नकल की जा सकती है। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वज़ीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि ज़रई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से ज़रई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दत कार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ारत ख़ारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहद अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमू मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है

0: कि वो मुतासिरा लोगों की मदद के लिए हर ज़रूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
1: भदोही ज़िले में सबसे ज़्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मिर्ज़ापुर में 10, फ़तेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद ज़िलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरक़ी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोज़ा मुज़ाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुज़ाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूद एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है। CBSE की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है।

0: सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज अभय रुस्तम सोपोरी से संतूर पर राग बसंत मुखारी। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे अभय रुस्तम सुपोरी से संतूर पर राग बसंत मुखारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कर्मचारी किसी भी संगठन की मानव पूंजी होते हैं। मानव पूंजी उन कौशलों का समूह है जो अपने प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं, जिससे बाजार में आपका महत्व बढ़ता है। तकनीकी प्रगति, हाइब्रिड कार्य मॉडल और वैश्वीकरण के कारण मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR अब कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। बदलते औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव संसाधन की भूमिका अब केवल प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक हो गई है। एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल विकसित करना किसी प्रतिस्पर्धी के लिए प्रौद्योगिकी खरीदने या पूंजी जुटाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। HR न केवल प्रतिभाओं का प्रबंधन करते हैं, बल्कि व्यवसाय की सफलता के लिए संस्कृति, प्रौद्योगिकी और कार्यबल को संरेखित करने की भूमिका निभाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। बदलता इंडस्ट्री इकोसिस्टम, टैलेंट से ट्रांसफॉर्मेशन तक। द एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लिमिटेड में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री अमित सिंह बेदी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
2: अमित सिंह बेदी जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्ते दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को बुलाया इस प्रोग्राम में। आई फील वेरी ऑनर्ड, और जो भी मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन साझा कर पाऊंगा मेरी खुशकिस्मती होगी, और जो भी मैं हेल्प कर पाऊँ सुनने वालों का इस माध्यम से, मेरे लिए तो यही बड़े सौभाग्य की बात है।
2: आपका एक लंबा अनुभव है, आप 22 साल से मल्टी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने कई कंपनियों में काम किया है। अब जबकि भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए दीर्घकालिक योजनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि उद्योगों का विकास, व्यवसाय की वृद्धि और उसके लिए आवश्यक योग्य लोगों की आवश्यकता किस तरह की है, और उसके लिए किस तरह के एक इकोसिस्टम की जरूरत है, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में, वैज्ञानिक संस्थानों में या औद्योगिक संस्थानों में?
3: तो दिलीप जी, अगर हम बात करें, काफी अरसे से हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि भारत देश में पॉपुलेशन काफी है, टैलेंट काफी है, बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास, हमारे देश में क्वालिफाइड टैलेंट है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग लग रहे हैं, हमारे यहाँ कई कई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कई कई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बट हमारे पास उस पॉपुलेशन में वो टैलेंट की अवेलेबिलिटी होना कि जो वो कार्य कर सके, वो चीज एक डेफिनेटली एक सोचने का विषय है। अगर आप देखें हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से वो एक लक्ष्य लेके चल रही है विकसित भारत का 2047 तक, और जिसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रही हैं, इंस्टीट्यूट्स बना रही हैं, तो अकेली गवर्नमेंट या कोई भी केंद्रीय सरकार या स्टेट सरकार नहीं वो लक्ष्य प्राप्त कर सकती जब तक हम सब उसके साथ जुड़े ना। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आज की डेट में और आने वाली तारीखों में किस टाइप की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से हमें उस शिक्षा की तरफ जाना है और अपने आप को तैयार करना है। अगर आज की डेट में आप बात करेंगे, डेटा एनालिटिक्स की बहुत बात हो रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ये बहुत बड़े विषय हैं, तो उसमें हमें समझना है कि हम आज उसमें क्या कर सकते हैं। जो आज का नई जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, उसमें उसको क्या शिक्षा लेनी है, क्या अपने आप को तैयार करना है, वो जानना जरूरी है, और उस लक्ष्य के लिए काम करना जरूरी है। और आज की इंटरनेट की दुनिया में इतना कुछ अवेलेबल है, वो कहते हैं ना इंटरनेट इज द ओशन ऑफ नॉलेज, बट आपको पता होना चाहिए उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। तो इस विषय में मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आज की पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो जाए और उसको ढंग से स्टडी करे, रादर देन जो टाइम स्पेंड करती है आज की डेट में सोशल मीडिया पे, उसको सही यूज करे नॉलेज के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में भी काफी नॉलेज है। तो अपना रुझान नॉलेज और लर्निंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे और जाने की कोशिश करें कि आज की डेट में क्या नए विषय चल रहे हैं।
2: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोग नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, तो जो नौकरी देने की क्षमता उसी में आ सकती है कि जो पहले अपना एक आधारभूत संरचना का विकास कर ले, जो उद्योगों का विकास करे, स्थापित करे, उसे रन करे, तभी वो किसी और को इंगेज कर सकते।

0: लगता है अपने यहाँ।
1: तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि आपका तो बहुत पुराना अनुभव है, बड़ा अनुभव है आपका, और आपने देश विदेश की कई कंपनियों से आप जुड़े रहे हैं। वर्तमान में आप जिस कंपनी के मुख्य प्रबंधक हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो चीजें होती है, उसमें आप लोग जब किसी प्रतिभा का चयन करते हैं अपने यहाँ के विभिन्न विभागों के लिए, तो उसमें किस तरह के पहलुओं पर आप गौर करते हैं और क्या क्या बातें महत्वपूर्ण मानते हैं किसी को कंपनी में जुड़ने के लिए?
2: दिलीप जी, अगर देखा जाए तो काफी टाइम से, काफी सालों से हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी को हायर कर रही होती है, वो एक्सपीरियंस देखती है। आज भी एक्सपीरियंस देखा जाता है कि वो वही एक्सपीरियंस, वही स्किल सेट लेके आ रहा है जो हमें अपनी करंट जॉब में करवाना है। बट इसके अलावा हमारी कंपनी द एग्जीक्यूटिव सेंटर और हमारी जैसी काफी कंपनीज जो आज की डेट में काफी डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, वो सिर्फ आज की जरूरतों को ही नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं, वो जब हम आगे ग्रोथ करेंगे अगले 3 या 5 साल में, तो ये बंदा उस चीज के लिए भी रेडी है कि नहीं, उसमें वो लर्निंग कर्व है कि नहीं। तो एक्सपीरियंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अलावा हम देखते हैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है नई चीजों को जानने का, नई चीजों को सीखने का और उसको अमल करने का, अपने आप को अडेप्ट करने का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम हमेशा अपने कैंडिडेट्स में देखते हैं जब भी हम हायर करते हैं द एग्जीक्यूटिव सेंटर में।
1: चलिए, बहुत अच्छा। जो टैलेंट एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट की बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उस शैक्षणिक संस्थान ने अपने यहाँ के जो छात्र है उसको किस तरह से एक प्रारूप दिया, किस तरह से विकसित किया है नॉलेज में। तो जैसे कि आपकी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, मुख्य रूप से ये कंपनी किस तरह के कार्यों से जुड़ी होती है, और इस तरह के कार्यों में हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ की एक बड़ी आबादी है, लोगों को रोजगार की तलाश है, तो इस तरह के कार्यों में रोजगार के अवसर क्या हो सकते हैं या होते हैं?
2: तो अगर आप देखें जो हमारी कंपनी है द एग्जीक्यूटिव सेंटर, वो को वर्किंग या फ्लेक्स वर्क स्पेस में की इंडस्ट्री में है, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता था, कोविड से पहले स्पेशली या उससे भी काफी अर्से पहले, कंपनीज हमेशा अपना एक स्टैंड अलोन ऑफिस लेती थी। बट जिस हिसाब से कंपनीज को और जिस हिसाब से ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है और चेंजेस आते हैं, तो कंपनीज को भी यह आभास हुआ है कि अपने फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि को वर्किंग या फ्लेक्स वर्क स्पेस ले लें। तो हमारा जो कंपनी है द एग्जीक्यूटिव सेंटर, हम फ्लेक्स वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जिसमें से अगर हम देखें हमारा क्लाइंटल 95% मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अपने ऑफिसेस हमारे सेंटर में बनाते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे यहाँ मोस्टली हम टैलेंट लेते हैं, वो हम लेते हैं ऑपरेशंस का, हॉस्पिटैलिटी का और अपना इंगेजमेंट टीम का। तो वो टीम जो क्लाइंट्स का जितने भी नीड्स होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो फ्लोर पे या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, उन सबको पूरा करते हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारा कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट है, और तकरीबन हम 1000 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, हम तो 1000 से ज्यादा टीम मेंबर्स हम बुलाते हैं उनको।
1: निश्चित रूप से इस तरह के जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें रोजगार के विभिन्न अवसर भी होते हैं, जैसे कि आपने चर्चा की, आजकल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात होती है, हॉस्पिटैलिटी की भी एक मैनेजमेंट है, टूर मैनेजमेंट है, और अभी मुझे इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़े कुछ कंपनियों के मालिकों का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला, और हमें भी और हमारे सुनने वालों को भी पता लगा कि एक्चुअली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो बड़े गेम्स होते हैं, तो उसमें क्या क्या तरह के काम होते हैं, क्या क्या उसमें भी लोग एम्प्लॉयड है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, और उसमें भी वो इंगेज होते हैं।
2: दिलीप जी, आप ताज्जुब होंगे कि जिस हिसाब से देश विकसित हो रहा है और जिस हिसाब से स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। अब उसके अलावा आप देखिए आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अब आज की डेट में जो पहले हॉस्पिटल होते थे और आज के हॉस्पिटल में आप देखिए बहुत अंतर आ चुका है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया। तो हमारी जो जनरेशन है उसको ये जानना का जरूरी है कि कौन सी नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं और क्या क्या चल रहा है, जिसके हिसाब से उस मुताबिक अपने आप को ढाल सके, अपने आप को तैयार कर सके फ्यूचर के लिए। तो अगर आप इवेंट्स की बात करें, आज की डेट में आप देखिए कितने बड़े बड़े सिंगर्स और यू नो म्यूजिशियंस इंडिया आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। अब सिर्फ सीमित नहीं हो रहे सिर्फ मेट्रोस के लिए, छोटे छोटे शहरों में भी जा रहे हैं। तो देश के लिए काफी अच्छा मौका है कि हम उस क्षेत्र में अपने टैलेंट को तैयार करें।
1: आपने इशारा किया कि देश को भी चाहिए कि एक टैलेंट विभिन्न क्षेत्रों के लिए तैयार करे, तो यहाँ बात होती है एक प्रबंधन शिक्षा की। तो जो भारत में जो प्रबंधन शिक्षा है, ये आपको चूंकि अभी तो विश्व के मुकाबले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी विश्व के जो शैक्षणिक संस्थान है वो इसमें बहुत आगे है, खास करके जो NIRF के रैंकिंग की या इंटरनेशनल रैंकिंग की बात होती है, तो भारत में प्रबंधन शिक्षा के लिए आपको विकसित होने के लिए, विश्व स्तर तक आने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या कुछ और चीजें की जानी चाहिए या मतलब जरूरत है कि इस दिशा में भी कार्य होना चाहिए उच्च स्तर पर?
2: तो सबसे पहली बात तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारी सरकार जो है विभिन्न विभिन्न लेवल्स पे ये काम कर रही है, चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हमें ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप करने हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए। साथ ही साथ हमारा जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनको भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए कि जो जान सके कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या है कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स अपने हिसाब से जो उनको पता लगता है वो उस हिसाब से प्रोग्राम को डिजाइन करती है। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज का, तो उसको बीच में कोई लाने के लिए कोई माध्यम और ज्यादा बड़े स्तर पे होने चाहिए जो समझ सके कि आज की जरूरत को और आने वाले समय की जरूरतों को उस हिसाब से अपने मॉड्यूल्स, अपने प्रोग्राम्स, अपनी ट्रेनिंग्स तैयार की जाए, इंटर्नशिप लेकर आया जाए, जैसे कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो नव युवक है जब वो पढ़ाई करके निकलता है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल सके, तो उससे क्या होगा उसकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, उसको भी समझ आएगा, जो वो अभी तक सोचता आ रहा था कि कंपनीज में क्या होता है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाएगा जब वो इंटर्नशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाएगा।
1: आप मुख्य अधिकारी है, मानव संसाधन अधिकारी है, जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, आपने बात की कि स्कूल एजुकेशन की भी किस तरह से मैनेजमेंट पे होना चाहिए। आजकल पढ़ाई ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी जो है उसमें पेशेंस की भी कमी है, वो जो है थोड़ा चाहती है कि जल्दी से कोई अच्छा पैकेज मिल जाए, कुछ ये हो जाए। तो अंत में हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो युवा है जो शिक्षा में तो जुड़े हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कई बार अच्छे पैकेज न मिलने से या अच्छे अवसर न मिलने से हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: इसको मैं दो तरीके से लेता हूँ। अगर आपके पास संसाधन है तो मैं तो हर नवयुवक को, हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को यही कहता हूँ कि आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं वो करिए, और फिर देखिए सारी जिंदगी नौकरी करनी है, सारी जिंदगी कमाना है, तो पहले अपने आप को तैयार करिए उस चीज के लिए। बट अगर हम जिस देश में रह रहे हैं हर किसी के पास वो संसाधन नहीं होते, ये भी एक सच्चाई है जिससे हम परे नहीं रह सकते। तो अगर आपको लगता है कि जो भी आपके हालातों की वजह से अगर आपको कोई नौकरी लेनी पड़ रही है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई मत छोड़िए, अपनी लर्निंग मत छोड़िए। और मतलब आज ये बात करते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज की डेट में इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसे से मिल रही है, काफी चीजें आपको फ्री भी मिल रही है, काफी कुछ है। मैं कहता हूँ ना बार बार, मैं ये सबको नई जनरेशन को कहता हूँ, इंटरनेट इज अ ओशन ऑफ नॉलेज, यू नीड टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट। तो आपको पता होना चाहिए वो नॉलेज लेनी कैसे, तो अपनी पढ़ाई मत रोकिए। तो अगर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने जॉब करनी शुरू की थी तो उसके 6 साल तक मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। आज की डेट में भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं कैसे अपने आप को अपडेट रख सकूं, या और यही हम जो हम बात कर रहे हैं ना कि आज की डेट में क्यों हमारा टैलेंट बाहर देशों में जाता है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज की वजह से जाता है, और इस चीज को समझना चाहिए और हमें अपनी नॉलेज पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको किसी तरह बढ़ाते रहना चाहिए।
1: बहुत अच्छा, मैं खुद देख रहा हूं कि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है, आपने XLRI जमशेदपुर जैसे माननीय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट HRM में लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट लिया है सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में, आप सरदार पटेल कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट से भी किया है, तो निश्चित रूप से रुकना नहीं है, बल्कि ज्ञान अर्जित के जो प्रयास है, आगे बढ़ने के जो प्रयास है, वो लोगों को करते रहना चाहिए, युवाओं को करते रहना चाहिए। श्री अमित सिंह बेदी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े खास करके जो प्रतिभा का जो विकास है, प्रतिभा का जो चयन है, और उन्नत व्यवसाय और उद्योगों के विकास में किस तरह की प्रतिभा की आवश्यकता है और उसको किस तरह से एक युवा को स्वीकार करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, जो आपने मेरे को यहां बुलाया और मौका दिया, एक अवसर दिया अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बदलता इंडस्ट्री इकोसिस्टम, टैलेंट से ट्रांसफॉर्मेशन तक, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थे द एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लिमिटेड में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री अमित सिंह बेदी, और भेंट करता थे दिलीप झा। अतीत में मानव संसाधन निर्धारित नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करते थे और सरल मापदंडों पर नजर रखते थे, जैसे नियुक्त कर्मचारियों की संख्या या दिए गए प्रशिक्षण के घंटों की संख्या। पर अब प्रबंधन के नए सिद्धांत केवल संख्याओं और अनुपालन पर नहीं बल्कि परिणामों और नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करते हैं। मानव संसाधन पेशेवरों को भी ये देखना चाहिए कि

0: कर्मचारी अपने द्वारा सीखे गए कौशल का उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: उद्योग पत्रिका।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

जिससे आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव पड़ी। 14 मई 1878 को वेस्लीन का ट्रेडमार्क पहली बार आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत किया गया। 1948 में इसराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और डेविड बेन गुरियन को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं 14 मई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बना। 1954 में आज ही के दिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जी वी मावलंकर ने यह ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा संविधान के प्रति निष्ठा, जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सजीव संस्था है। 1955 में आज ही के दिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और कई पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच वॉरसा पैक्ट नामक सैन्य गठबंधन का गठन किया गया। 1973 में नासा ने अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब लॉन्च किया। वहीं 1999 में आज ही के दिन सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉर्ड्स इंग्लैंड में शुरुआत हुई। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे। और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मृणाल सेन की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिन्दी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते रहे। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत की थी 1956 में बंगाली फिल्म रात भोरे से। वहीं 1958 में उनकी दूसरी सफल फिल्म आई नील आकाशेर, और इस महत्वाकांक्षी फिल्म में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से की थी। तो आइए इसी फिल्म से ये प्यारा संगीत सुन लेते हैं।

0: शुद्ध नील।
1: 1959 की ये बंगला फिल्म जिसने मृणाल सेन को पहचान दिलाई थी और महादेवी वर्मा की कहानी पर ये आधारित फिल्म थी। 1960 की उनकी फिल्म बाईशे श्रावण जो कि 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी और आकाश कुसुम ने एक महान निर्देशक के रूप में मृणाल सेन की छवि को विस्तार दिया। मृणाल की अन्य सफल बंगाली फिल्में रही इंटरव्यू, कलकत्ता 1972 और पदातिक 1973 में आई, जिन्हें कलकत्ता ट्रायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। तो आइए सुन लेते हैं भुवन शोम के ये प्यारा सा गीत।

इसमें भुवन शोम की भूमिका निभाई थी उत्पल दत्त ने, और ये एक सख्त बूढ़ा अकेला रेलवे अफसर होता है जो रिश्वतखोरों से नफरत करता है, नियम का पक्का होता है, और उसकी मुलाकात होती है गौरी से जो बहुत ही सादगी के साथ रहती है, और उसके बाद दिन की कहानी शुरू हो जाती है। और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जगदीश चंद्र माथुर ने, जिन्होंने आकाशवाणी में भी काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो में वो लेकर

0: आंकी पर पूरा समाज दिखाई दिया और इसके अलावा 1969 में पहला राजा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असम्बली में यकसा सिविल कोड बिल पेश करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरब बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकल व हमल पर आए सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर परवीन सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने नवीं आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से कबल आलमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची, थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा, क्यूबा के वज़ीर खारजा और वियतनाम की नायब वज़ीर खारजा शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वज़ीर खारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहद अरब इमारात के उमूर खारजा के वज़ीर ममलकत खलीफा शाहीन अलमुरार भी शामिल हैं। इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग के साथ भारत ने की थी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असम्बली में यकसा सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी दूसरी मुद्दत कार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब शर्मा ने कहा कि आसाम असम्बली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वदा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाज़े किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरे कार से बाहर रहेंगे। इस इकदाम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसा सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल हैं। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तजारत के डायरेक्टर जनरल ने बरामदाती पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस एथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दिगर मुल्कों की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हमल पर आए सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा की तकर्री, म्यूनसिपल तकर्री और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्री घपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सपुर्द करने का फैसला किया है। مغربی بنگال حکومت نے ان سبھی افراد کی خدمات کو ختم کر دیا۔

इस गज़ल के साथ ही आज का हुस्ने गज़ल प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम, चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे

0: लाभ लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
1: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है, और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
2: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको एसपीआरस बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई, लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है, और डिमांड कहां सबसे ज्यादा

0: हो रही है वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है? वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों, एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस

0: से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
2: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी

0: पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन। एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज टू मेक दैट हैपन। वी सेट आवरसेल्व्स ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल आउटले।
0: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
2: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
0: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
3: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की

0: है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फल स्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
2: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
2: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू,
4: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

बिल्कुल, जैसे इस नगमे में आपने सुना कि लोग डाकिये का बहुत ही बेसब्री बेताबी के साथ इंतज़ार किया करते थे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वाकिफ नहीं थे लिखाई पढ़ाई से, वो अक्सर अपने खतूत डाकियों के ज़रिए पढ़वा भी लिया करते थे और कभी कभी इन्हीं के ज़रिए अपने ख़त लिखवा भी लिया करते थे। ख़त किताबत चिट्ठी जो है वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने हाल अहवाल, अपने दुख

जिस दौर का हम तذکرہ कर रहे हैं उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महज कागज़ का एक पुर्जा कहलाने वाला ये ख़त किसी ज़माने में अपनी अहमियत खो देगा और इसकी जगह कुछ नए अंदाज के ख़तों किताबत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ये बात वसूख से कही जा सकती है कि ये पुराने दौर के जो ख़त हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो आज भी हमारी विरासत का अहम हिस्सा हैं और आज भी कहीं ना कहीं म्यूज़ियम्स में आपको पुराने दौर के ये ख़त नज़र आ जाएंगे। ख़त के लिखने के भी अलग अलग दौर में अलग अलग ज़रिए रहे। जैसे कागज़ पर ख़त लिखने का तो आगाज़ काफ़ी बाद में हुआ। कहा यह जाता है कि पहले पेड़ों के पत्तों पर, जो थोड़े मजबूत हुआ करते थे, उन पर चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। उसके बाद दौर बदला तो फिर कपड़े का जब इजाद हुई तो जो इलीट क्लास है उन्होंने कपड़े के ऊपर खूबसूरत खतूत का सहारा लिया और अपने पैगामात कपड़े के ऊपर लिख कर एक जगह से दूसरी जगह गए। लेकिन ये एक आला तबके तक महदूद रहा ये सिलसिला। फिर कागज़ की इजाद के बाद ये आसानी और भी ज़्यादा हो गई और आम लोगों तक भी ये तमाम चीज़ें पहुँची और फिर ख़त के ज़रिए एक दूसरे तक हम अपने पैगामात पहुँचाने लगे। ख़त कागज़ वाले जो थे वो अलग अलग तरह के थे। सामईन, आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे क्योंकि आपने भी उर्दू सर्विस को बहुत ख़त लिखे। कहीं पोस्ट कार्ड की शक्ल में थे तो कहीं इनलैंड लेटर्स थे, कहीं एक पर्सनल लिफाफा और उसमें स्टैंप लगा के, डाक टिकट लगा के आपने उर्दू सर्विस के नाम अपने मोहब्बत नामे भेजे हमें। और आज भी वो ख़त पुराने आपके जो भेजे हुए हैं वो यकीन जानिए कि उर्दू सर्विस की असास है। जहाँ तक बात है मोहब्बत के ख़त की या मोहब्बत के पैगामात की, तो इन्होंने भी बड़ा उरूज पाया, बड़ी मकबूलियत हासिल हुई जब लोग अपने दिल की बात, अपने दिल का अहवाल ख़त के ज़रिए अपने महबूब या अपनी महबूबा तक पहुँचाया करते थे। और इस तरह के मोहब्बत नामों के लिए अल्फाज का इंतखाब भी बहुत सोच समझ कर किया जाता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहब्बत एक लतीफ़ एहसास है, उसी तरह खतूत के लिए भी बहुत ही नर्म, लतीफ़, शुस्ता अल्फाज का इंतखाब करके अपने दिल की बात अपने महबूब तक पहुंचाई जाती थी।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस एयर कर रही है प्रोग्राम मेरी पसंद, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख़त की अहमियत या फिर चिट्ठी की अहमियत, किसी ज़माने में हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ करती थी। और जैसे कि हमने कहा कि जैसे जैसे वक्त बदलता है चीज़ें बदल जाती हैं, अपनी अहमियत खो देती हैं पुरानी चीज़ें और उनकी जगह कुछ नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल जैसे आज का जो जदीद दौर है, तो अब आप देखते हैं कि वो पुराने दौर के ख़तों किताबत का सिलसिला मौकूफ़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हमारे सामईन यानी कि आप लोग भी जब हमें चिट्ठी या पत्र लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, तो अब वो ख़त आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। आप हमें ईमेल्स भेजते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आपके ईमेल जगह पाते हैं। एक दूसरे को ख़त भेजने का जो सिलसिला है वो अब इसी नौयत का हो गया है कि हम मेल्स के ज़रिए, चाहे वो हमारे पर्सनल ख़तों किताबत हो या फिर ऑफिशियल हो, हम ईमेल का सहारा लेते हैं। इससे वक्त की भी बचत होती है और हाथ के हाथ हमारे ख़त जो हैं हमारे जान पहचान दोस्त अहबाब तक पहुँच भी जाते हैं। और ये जो पुरानी ख़तों किताबत है, ये एक खूबसूरत एहसास बनकर, एक खूबसूरत याद बनकर सिर्फ हमारे दिलों में महफूज रह गई है। हर दौर की अपनी अहमियत रही है। उस दौर में ख़त किताबत प्यारे अंदाज के भेजे हुए कुछ खूबसूरत कागज़ पर, कुछ रंग बिरंगे कागज़ों पर भेजे हुए खतूत आज भी लोग अपने पास महफूज रखते हैं पुराने दौर की यादगार के तौर पर। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो आज का दौर है और आज के दौर की जो ज़रूरियात है, जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, उसमें शायद यही ज़रिया ज़्यादा मुनासिब था कि इधर आप ख़त लिखें और आपकी एक फिंगर टिप पर वो ख़त जो है आपका, आपके अपनों तक पहुंच जाए, जैसे कि पहुंच जाया करता है ईमेल्स की शक्ल में। चाहे ख़त कागज़ों के दौर का रहा हो, चाहे ख़त पेड़ों के पत्तों पर लिखे जाने वाले रहे हों, या फिर कपड़ों के ऊपर लिखे जाने वाले रहे हों, लेकिन हर दौर में हर ख़त की अपनी अहमियत रही, जो आज भी दिलों को गुदाज कर जाती है। और आज के दौर की जो ये नई जदीद टेक्निक्स हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल हैं आज के दौर की ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि हमारा लिविंग स्टाइल जैसे जैसे बदला है, वैसे ही चीज़ें भी बदल रही हैं। अब ये हम पर और आप पर मुनहसर करता है कि आने वाली जो नई नई जदीद तहक़ीक़ात हैं या जो नई नई टेक्निक्स हैं, उनको हम किस तरह और कितना इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारे बेनिफिट्स के लिए होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती कई बार जो है वो ख़तरनाक हो जाती है। सिर्फ इतना ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ख़त लिखें, चिट्ठी लिखें, पत्र लिखें ईमेल्स की शक्ल में ही, हमारे अल्फाज और अलकाब और जो आदाब हों, वो कहीं पर भी जो तहजीब का दामन है वो छूटने नहीं पाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो, और ख़ूबसूरत अल्फाज और हमारे जो तरतीब दिए हुए हों वो ऐसे हों कि जिसको हम भेज रहे हैं अपना ख़त और जिस एहसास के साथ भेज रहे हैं, वो एहसास उस तक बखूबी पहुंच जाए। आज के प्रोग्राम की यह आखिरी पेशकश किशोरदा की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब सुनते हैं गीतों भरी कहानी, उनवान है उदासियाँ। तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की है।

अपने वतन से दूर इस परदेश में आकर जीनत खुशी से उछल पड़ी। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां, रोशनी में जगमगाते शहर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसी चकाचौंध उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जीनत की खुशी की एक वजह और भी है। कल तक हमीद नाम के जिस शख्स से वो वाकिफ भी नहीं थी, आज वही उसका शौहर बन उसे इस परदेश में ले आया है। घर पहुंचते ही हामिद के दोस्तों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। शाम को एक दावत मुनक्कत हुई जिसमें दोस्तों ने इस नई जोड़ी को मुबारकबाद दी।

0: एक दो दिन तो घर में ही जश्न का माहौल रहा। उसके बाद हामिद ने जीनत को शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कराई। कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखकर जीनत बहुत खुश होती। हामिद रोज जीनत के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता।
1: जीनत, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
2: क्या लाए हैं? जरा पैकेट खोलकर दिखाइए।
1: ऐसे नहीं, पहले वादा करो कि इसे पहनकर तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी।
2: अरे पहले दिखाइए तो सही। क्या इसमें मेरे लिए खूबसूरत गहने हैं?
1: नहीं नहीं, इस वक्त तो मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट डिजाइन की एक ड्रेस लाया हूँ।
2: अरे ये क्या, ये तो मिनी स्कर्ट है। और मैं
1: तुम इसे पहनोगी?
2: मैंने साड़ी सूट सलवार के अलावा दूसरी कोई ड्रेस नहीं पहनी। क्या मैं इस रिवायती लिबास में अच्छी नहीं लगती?
1: अच्छी लगती हो, लेकिन पार्टी में देखना, ज्यादातर लोग इसी तरह के लिबास में मिलेंगे।
2: मुझसे यह नहीं, इस लिबास में मेरे सारे बदन की नमाइश होगी। नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं पहनूंगी।
3: जैसा देश वैसा भेस, फिर क्या डरना। अरे

हामिद जीनत को पूरी तरह से मगरबी कल्चर में ढालने की कोशिश करता है। कभी इनकार तो कभी इकरार करते कराते जीनत के दिन बीतने लगे। नई जिंदगी, नया माहौल।

जीनत के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जिस उम्मीद के साथ उसके वालिद ने उसकी शादी हामिद से की थी वो तहस नहस हो गई। जीनत कुछ देर के लिए अपने माजी में खो गई।

जीनत गांव में पली बड़ी अपने वालदेन की सबसे बड़ी बेटी है। उसके अलावा चार छोटी बहनें और एक भाई है। वालिद खेती कर बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं। आज जीनत 10वीं जमात में अव्वल आई है और खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे।

0: बहुत खुश नजर आ रही हो बेटी।
1: अब्बू मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ।
0: शाबाश बेटी, तुमने आज मेरा नाम रोशन कर दिया।
1: अब मैं शहर जाकर ऊंची तालीम हासिल करूंगी।
0: ख्वाहिश तो मेरी भी यही है बेटी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं मजबूर हूँ।
1: मजबूर? कैसी मजबूरी अब्बू?
0: तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, इतने बड़े परिवार की परवरिश करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। खेती बाड़ी करके दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा
1: और क्या अब्बू?
0: तुम्हारे लिए एक उम्दा रिश्ता आ रहा है, लड़का विलायत से कुछ दिनों के लिए आ रहा है। उसका वहां बहुत बड़ा कारोबार है, उसकी फैक्ट्री है, आलीशान मकान है। शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी।
1: मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अभी आगे पढ़ना है।
0: समझने की कोशिश करो बेटी, इस वक्त ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले।
1: अब ये नहीं तो कोई और रिश्ता आ जाएगा।
0: इस रिश्ते से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी बेटी, हमारी गरीबी भी दूर होगी, तुम्हारी और बहनों की शादी भी आसानी से हो जाएगी।
1: अब्बू आप मेरे अरमानों का गला घोट रहे हैं।
0: नहीं बेटी, तुम मेरी मजबूरी तो समझती हो।
2: सचमुच जीनत के अरमान

चुका था। जीनत मन मसोस कर दिन बिताने लगी। उधर हमीद का वहशीपन बढ़ने लगा। वो नशे में धुत होकर आता और जीनत से मारपीट करता। आखिर सहने की भी एक हद होती है। जीनत हमीद के इस रवैये को जब समझ नहीं पाती तो वो उसके बारे में और तफ्तीश करती है। हमीद की मौजूदा नौकरी की मियाद खत्म हो चुकी है। वो अब गैर कानूनी

जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे।

लेते हैं। यह तो एक रेतीला रास्ता है, इस पर जितना चलोगे पांव उतना ही धंसते चले जाएंगे। कमिश्नर साहब की मदद से जीनत और हामिद को एक इदारे में काम मिल जाता है। जीनत कंप्यूटर सीखकर उस पर उम्दा काम करने लगती है और दिनों दिन तरक्की करती जाती है। दोनों दिन भर सख्त मेहनत करते और रात को अपने दोस्तों की महफिल में शिरकत करते।

0: आखिर उन्हें पासपोर्ट और वीजा मिल जाता है। हामिद तो खुश हो जाता है, लेकिन जीनत अपने काम में इतना मसरूफ हो जाती है कि वो काम छोड़ना नहीं चाहती।
1: जीनत, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा अपने घर, अपने वतन जाने को बेताब रहती थी।
2: हाँ, पर आज मैं उस मंजिल पर पहुँच गई हूँ जहाँ से वापस जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता।
1: आखिर तुम्हें भी यहाँ का नशा चढ़ ही गया, लेकिन अब तो हमें वापस जाना ही होगा।
2: हाँ, काश हम यहाँ और रुक सकते, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ जो हुनर सीखा उसका इस्तेमाल मैं अपने देश की तरक्की के लिए कर सकूंगी।
0: और आखिरकार जीनत और हामिद अपने देश के लिए चल पड़े। एरोप्लेन से उतरते ही दोनों अपने देश की मिट्टी को चूम लेते हैं। उस मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को खुशगवार बना देती है।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी, उनवान था उदासियाँ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अफ्रीका इश्तराक का अगला मरहला आला कदर वाली मसनूआत और मरबूत सप्लाई चेन पर मबनी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बातचीत जारी है। रूस ने अमन मुजाकिरात के बावजूद यूक्रेन पर 800 ड्रोन्स दागे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी बनाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में जारी है। मीटिंग की सदारत वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। मीटिंग में अराकीन और शराकतदार ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए खारजा और सरबराह ने वफूद शिरकत कर रहे हैं।

इस साल की भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू है लचक, इख्तिरा, इश्तराक और पायदारी की तश्कील। इस मौजू को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के लिए इंसानियत पहले और अवाम मरकूज़ विजन से तहरीक मिली है। मीटिंग में ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची, थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सुहासिक फुंगवा केटोव, क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो परिला और वियतनाम की वज़ीर ख़ारजा निंग्योन मिंग हैंग हिस्सा ले रहे हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलकत खलीफा शाहीन अल मुरार भी शामिल हैं। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर अपने नज़रियात का तबादला करेंगे। इसके बाद वो दोपहर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 20, इस्तेकाम, इख्तिरा, तावुन और पायदारी। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ज़िराअत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हिफ्ज़ान सेहत और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शराकतदारी तक भारत अफ्रीका इश्तराक का अगला मरहला आला कद्र वाली मसनूआत और मरबूत सप्लाई चेन्स पर मबनी होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी डायलॉग और नुमाइश और भारत अफ्रीका फोरम समिट के लिए तारुफी सेशन से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने उजागर किया कि कैसे भारत और अफ्रीका आलमी खित्ते जुनूब के लिए सबकी शमूलियत वाला और इख्तरा पर मबनी मुस्तकबिल मिलकर तश्कील दे सकते हैं। भारत अफ्रीका कारोबारी डायलॉग और नुमाइश नई दिल्ली में इस महीने की 29 से 31 तारीख तक मुनक़िद होगी। इसके साथ ही चौथी भारत अफ्रीका फोरम समिट भी मुनक़िद की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बातचीत शुरू हो चुकी है। अपने इफ्तिताही खिताब में जिनपिंग ने चीन और अमरीका से हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप से बातचीत और साल 2026 को चीन अमरीका ताल्लुकात के नए तारीखी बाब के तौर पर रकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही खिताब में ट्रंप ने जिनपिंग को अजीम रहनुमा करार दिया और कहा कि दोनों सुपर पावर्स के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। इससे पहले बीजिंग ने सदर ट्रंप का अजीमशान इस्तकबाल किया जहां ट्रंप ने ग्रेट हॉल ऑफ पीपल के दाखिले पर चीनी रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात की। अमरीकी सदर दो रोज़ा छोटी कॉन्फ्रेंस के लिए कल शाम बीजिंग पहुंचे हैं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तिजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडे में शामिल रहने की तवक्को है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी का दौरा करेंगे जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का यह दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ारत ख़ारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दो तरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सिर्फ 5 महीने में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के फलाह व बहबूद भी बातचीत के एजेंडे में शामिल रहेगी। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर यूएई पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और यूएई के दरमियान तारीखी ताल्लुकात में एक कामयाबी बताया गया, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का मजीद जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब यूएई ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में यूएई की वजारत खारजा ने कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ यूएई के ताल्लुकात खुफिया नहीं हैं बल्कि खुलेआम हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम माहदे पर मबनी हैं। पोस्ट में मजीद कहा गया कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने
خلیجی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعاون

कुली फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें थीं शब्बीर कुमार, सुरेश वाडकर और आशा भोसले की। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और साधना सरगम को सुनिए, फिल्म है दामिनी।

जांबाज फिल्म का नगमा सामईन अभी आप सुन रहे थे सपना मुखर्जी और महेश गधवी का गाया हुआ। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नज़र कर रहे हैं, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

0: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में इल्ज़ाम फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है मोमिन खां मोमिन, तहरीर महमूद हाशमी की है।
1: गजल को अगर हम उर्दू शायरी की आबरू मान लें तो फिर मोमिन को भी हमें उर्दू गजल का गौहरे नायाब तस्लीम करना होगा। मोमिन को यह मकाम इस बात के बावजूद हासिल है कि मोमिन से कबल मीर गजलगोई के मैदान में उन बुलंदियों को सर कर चुके थे जहां उनसे कबल किसी दूसरे की रसाई नहीं हो सकी थी। हकीम मोमिन खां मोमिन उन फनकारों में शुमार किए जा सकते हैं जिनकी अहमियत और कदर मंजिलत को उनकी जिंदगी में नहीं पहचाना जाता है। हकीकत यह है कि मोमिन ने उर्दू शायरी को एक नया मिजाज, नया आहंग दिया। मोमिन की शायरी उनके अहद से इबारत है और मोमिन का अहद वो अहद है जब एक नई तहजीब, एक इनकलाब दबे पांव हिंदुस्तान में आ रहा था। मुगलों का सियासी जवाल करीब आ चुका था, लेकिन हैरत की बात यह है कि सियासी और समाजी तगयरात के बावजूद इल्म और फजल के एतबार से दिल्ली को न सिर्फ मरकजी मकाम हासिल था बल्कि ये शहर मशाइख, उलमा और शेर व अदब की मुंतखब रोजगार शख्सियात के एतबार से इंतहाई मालामाल था। इल्म व फजल के चर्चे आम थे, शेर व अदब का

अभी आपने सुना जलते बदन फिल्म का नगमा, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। आइए अब सुनते हैं कस्में वादे फिल्म का नगमा, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

ये आकाशवाणी है। अब आप आसिया मेमुना से आलमी खबरें सुनिए। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अफ्रीका इश्तराक का अगला मरहला आला कद्र वाली मसनूआत और मरबूत सप्लाई चेन पर मबनी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बातचीत जारी है। रूस ने अमन मुजाकरात के बावजूद यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी बनाई जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में जारी है। इस मीटिंग की सदारत वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। इस मीटिंग में अराकीन और शराकतदार ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए खारजा और सरबराहान वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस साल की भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू है लचक, इख्तिरा, इश्तराक और पायदारी की तश्कील। इस मौजू को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के लिए इंसानियत पहले और अवाम मरकूज विजन से तहरीक मिली है। इस मीटिंग में ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सिहासक फुगेंग कैटक्यो, क्यूबा के वजीर खारजा ब्रूनो रॉड्रिग्यूज और वियतनाम के नायब वजीर खारजा ग्यूएन मिन हैंग हिस्सा ले रहे हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारजा डेटो सैरी उटामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल अमरार भी शामिल हैं। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अफ्रीका इश्तराक का अगला मरहला आला कदर वाली मसनूआत और मरबूत सप्लाई चेन पर मबनी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बातचीत जारी है। रूस ने अमन मुजाकरात के बावजूद यूक्रेन पर 800 ड्रोन्स दागे हैं। और IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने 9वें IPL सेंचुरी बनाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जी दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, 1983 में बनी यह एक भारतीय प्रेम की फिल्म थी जिसका नाम है बेताब। दोस्तों, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा था और राहुल रवेल ने निर्देशित किया था, विक्रम सिंह देहल ने निर्मित किया था और फिल्म में मुख्य रोल में थे सनी देओल और अमृता सिंह। ये इनकी पहली भूमिका फिल्म थी। साथियों, फिल्म का कथानक विलियम शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रू पर आधारित था और संगीत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहुल देव वर्मन ने दिया था।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: साथियों, बेताब का उद्घाटन 1981 में दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र और सायरा बानो की उपस्थिति में किया गया था। बेताब की रिलीज से पहले सनी देओल ने 1982 में आई फिल्म मैं इंतकाम लूंगा में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके पिता धर्मेंद्र जी मुख्य भूमिका में थे। दोस्तों, बेताब एक बड़ी सफल फिल्म रही थी, 1983 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी, जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म को 1987 में रमेश बाबू के साथ तेलुगु में सम्राट और 2011 में कार्तिक शेट्टी के साथ कन्नड़ में कार्तिक के रूप में भी रिमेक किया गया था।

श्रोताओं, बात करें इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं की तो वो इस प्रकार थीं। सनी देओल थे सनी कपूर के रूप में, अमृता सिंह रोमा सिंह के रूप में, शमी कपूर सरदार दिनेश सिंह गिरजी के रूप में और निरूपा राय थीं सुमित्रा कपूर के रूप में। प्रेम चोपड़ा ने रोल किया था बलवंत का और राजीव आनंद ने यशवंत का। अनु कपूर ने किया था चेला राम का रोल।

साथियों, इस फिल्म में पांच लोकप्रिय गाने हैं जिनके बोल आनंद बख्शी और लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने गाए थे और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और इस फिल्म में सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी बहुत ही पसंद की गई थी।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम समाप्त कर दें। लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर, और स्टूडियो की घड़ी में 1:40 होने को है। और अब आप सुनेंगे समाचार
1: कुछ और गीता दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, ब्रिक्स देशां दे विदेश मंत्रियों की दो रोजा मीटिंग नवी दिल्ली में चल रही है। कांग्रेस के विधायक वी डी सतीशन केरलम के नवे मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब पुलिस ने बीती 5 मई नूं जलंधर च BSF दफ्तर सामने हुए धमाके के मुख मुलजम नूं गिरफ्तार करने च सफलता हासिल की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने अज बीजिंग च दुवरली गलबात की है। IPL क्रिकेट च अज धर्मशाला च पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस नाल होगा। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो रोजा मीटिंग नवी दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इसकी प्रधानगी कर रहे हैं। मीटिंग में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और मैंबर के भाईवाल देशों के प्रतिनिधि मंडल के मुखी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा विश्व व्यवस्था के केन्द्र में ने। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही के संघर्षों ने गलबात और कूटनीति की अहमियत को होर उजागर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस गुंझलदार अनिश्चित संसार में समानता के सिद्धांतों से सांझियां पर वख-वख जिम्मेवारियां बरकरार रखते हुए विचार वटांदर निरंतर विकास की दिशा च अगे वधाया जाना चाहिए। डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा कि तकनीकी तरक्की आलमी दृश्य न मुड़ आकार दे रही है और चंगे शासन और समावेशी विकास लिए इसकी वरतों की जा सकती है। उन्होंने इस गल ते भी जोर दिता कि दहशतगर्दी विरुद्ध सहयोग नूं मजबूत करने विच भी सांझे हित ने। डॉ जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष आर्थिक अनिश्चितताओं ते व्यापार तकनोलॉजी और जलवायु तब्दीली नाल संबंधित चुनौतियां विश्वव्यापी दृश्य नूं बदल रही ने अते ए उम्मीद वध रही है कि ब्रिक्स इस विच एक अर्थपूर्ण अते स्थिर भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे देश ऊर्जा भोजन खाद और सेहत सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स संगठन इन चुनौतियों वधेरे प्रभावशाली ढंग हल करने में मदद कर सकता है। मीटिंग में ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियेरा, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लवरोव, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सग्योनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी ओतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, UAE के विदेश राज मंत्री खलीफा शाहीन अलमरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग दौरान ब्रिक्स के विदेश मंत्री आपसी हितों के आलमी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज सवेरे नवी दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्योनो नाल मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि मीटिंग दौरान उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान नाल व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया भाईवाली और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। कांग्रेस के विधायक वी डी सतीशन केरलम के नवे मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने अज नवी दिल्ली में एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान उन्होंने नां का ऐलान किया। 140 मैंबरी केरलम विधानसभा च कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF ने 102 सीटा जीत के बहुमत हासिल किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आफत प्रतिक्रम बल NDRF ने दो दहाके के थोड़े समय में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीतया है। अज गाजियाबाद में NDRF के प्रेजिडेंट कलर अवार्ड समारोह में बोलदिया श्री शाह ने कहा कि जदों भी देश में किधरे भी कोई आफत आउंदी है जां आउण दा संकेत मिलदा है तां NDRF की मौजूदगी लोगों नूं सुरक्षित महसूस करवाउंदी है। उन्होंने कहा कि प्रेजिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त करना किसी भी हथियारबंद वाली माण वाली गल है।
3: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
2: श्री शाह ने कहा कि जदों भी NDRF का अमला राहत और बचाव कार्यों लिए दुनिया में किधरे भी जाता है तो उन्होंने हमेशा लोगों का प्यार ते भरोसा मिलता है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIR RNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए वी डी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग, तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही कलमात में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमनो सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर

0: मददगार और आला सतही वफ्द भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जायगार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ एक मामले में छापे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ये छापे गैर मुल्की करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक कानून FEMA फेमा के जाब्तों के तहत 14 लोगों और कंपनियों से वाबस्ता मकामात पर मारे जा रहे हैं। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि इस मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है कि जायगार टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूल रही है। और बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की एमेली शुल्स को स्ट्रेट गेम्स में 28 मिनट में 21-13 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं सत्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के बरियान जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल को स्ट्रेट गेम्स में 21-12 21-19 से हराकर आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए VD सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India asserts BRICS expected to play constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
2: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
1: Dr. S. Jaishankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.

0: को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा।

0: तेलंगाना और उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के

0: ये ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज के खास रेडियो प्रोग्राम एक ही कलाकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, रेडियो सफ़र में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस शख्स की जिन्होंने रोमांस, संगीत, दोस्ती और युवा दिलों की धड़कनों को फिल्मों में इस अंदाज से पिरोया कि उनकी फिल्में आज भी ताजगी का एहसास देती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे निर्माता, निर्देशक, लेखक नासिर हुसैन की। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं बनाते बल्कि एक दौर बना देते हैं। एक ऐसा दौर जिसमें प्यार था, संगीत था, दोस्ती थी, सफ़र था और ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीने का अंदाज था। आज का ये सफ़र समर्पित है उस फिल्मकार को जिसने कहा नहीं बल्कि अपनी फिल्मों से महसूस कराया कि ज़िंदगी एक खूबसूरत गीत है। हम आज बात कर रहे हैं नासिर हुसैन की, उनकी फिल्मों की, उनके अनसुने किस्सों की और उन गीतों की जो आज भी दिलों में बसे हुए हैं।

नासिर हुसैन का जन्म 16 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत फिल्मों में लेखक के रूप में की थी। उनकी लेखनी में भावनाएं थीं, संवादों में अपनापन और कहानियों में मनोरंजन। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1957 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। इस फिल्म में शम्मी कपूर की छवि भी बदल गई। शम्मी कपूर का मस्तमौल अंदाज और नासिर हुसैन की युवा सोच, दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड शुरू किया।

अगर किसी निर्देशक की फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा बन जाए तो समझ लीजिए कि वो जादूगर है। नासिर हुसैन की फिल्मों का संगीत सुपरहिट रहा। उनकी फिल्मों में आरडी बर्मन और ओपी नैयर जैसे संगीतकारों ने कमाल किया और फिर आए वो गीत जो आज की पीढ़ी भी गुनगुनाती है। उनकी कमाल की फिल्में रहीं जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, कयामत से कयामत तक, यादों की बारात, कारवा, हम किसी से कम नहीं, दिल दे के देखो जैसी फिल्में शामिल थी। तो अब सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो आज भी युवा पीढ़ी के जुबान पर है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं नासिर हुसैन। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। और अब बढ़ते हैं, नासिर हुसैन का विवाह आयशा खान से हुआ। उनके पुत्र मंसूर खान भी निर्माता निर्देशक रहे, जिनकी बेटी भी अभिनेत्री जाइन मारी खां हैं। आपको ये भी बता दें कि नासिर हुसैन की पत्नी आयशा खान असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, जिन्होंने उनकी फिल्में बहारों के सपने और हम किसी से कम नहीं में काम किया। आर डी वर्मन के साथ 9 फिल्मों में काम किया, साथ ही सबसे ज़्यादा काम उन्होंने आशा पारेख के साथ किया, जिनमें दिल दे के देखो से लेकर प्यार का मौसम शामिल थी। 13 साल के गैप के बाद मंजिल मंजिल फिल्म में उन्होंने अपनी वापसी की। नासिर हुसैन ने अपने मेंटोर शशधर के पुत्र जॉय मुखर्जी के साथ एक फिल्म भी बनाई, जो थी फिर वही दिल लाया हूँ।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म में आशा पारेख और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। और फिर वही दिल लाया हूँ में फिल्म की लोकेशन और संगीत आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि नासिर हुसैन अपनी फिल्मों की शूटिंग में बहुत बारीकी रखते थे। हर फ्रेम को खूबसूरत बनाने के लिए घंटों मेहनत करते थे। तीसरी मंजिल फिल्म में थ्रिल और म्यूजिक का शानदार मेल पेश किया गया। हालांकि निर्देशन विजय आनंद का था, लेकिन कहानी और निर्माण नासिर हुसैन का था। और फिर वो हसीना जुल्फों वाली, आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा जैसे गीतों ने इतिहास रच दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि शम्मी कपूर को शुरुआत में आजा आजा गीत थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन बाद में यही गीत सुपरहिट रहा। वो सिर्फ फिल्मकार ही नहीं बल्कि प्रतिभा पहचानने वाले इंसान भी थे। उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया। सबसे बड़ा नाम आमिर खान है, जो कि उनके भांजे हैं। उन्होंने कयामत

1990 के दशक के बाद नासिर हुसैन फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन उनकी बनाई दुनिया आज भी जीवित है। 13 मार्च 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हर पीढ़ी को मुस्कुराना सिखाती हैं। उनकी फिल्मों में कुछ बातें हमेशा दिखाई देती थीं, खूबसूरत संगीत, हल्का फुल्का रोमांस, परिवार और दोस्ती, सफ़र और रोमांच और दिल को छू लेने वाली भावनाएं। उनकी फिल्मों में उदासी भी होती थी, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ लोग वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यादों में हमेशा जवान बने रहते हैं। नासिर हुसैन उन्हीं नामों में से एक है जिन्होंने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी, बल्कि प्यार करने का अंदाज, दोस्ती निभाने का एहसास और संगीत में जीने की वजह थी।

इसी खूबसूरत एहसास के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में नई यादों के साथ। नमस्कार।

इख्तिताम पज़ीर होगी। तो सामीन, ये था उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। शब के माफ़ कीजिएगा दोपहर के 3:05 होने को हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़रा खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग, तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मुंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़रा खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़रा खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अमन व सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आलमी गैर यकीनी और इक्तसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया महाजाराई से बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत उजागर हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पेचीदा और गैर यकीनी के दरमियान दुनिया में मुसावी और मुश्तरका उसूलों को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ बातचीत में मुसलसल पायदार पेशरफ्त होनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने शरीक ममालिक का उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स तरीक़ेकार को मुस्तहकम करने की खातिर जारी इश्तराक के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी साझेदार और मेंबर ममालिक दो तरफा और कसीर रुखी राबतों के जरिए करीबी और मुसलसल राबते में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज की ब्रिक्स मीटिंग नज़रियात के तबादले और तरक्की के हवाले से हमाहंगी के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज सुबह इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जामे क़लीदी भारत इंडोनेशिया साझेदारी और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की अंजुमन के साथ इश्तराक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पैराग्वे के यौम आज़ादी पर आज वहाँ के वज़ीर ख़ारजा रुबिन रामीलेस एल को मुबारकबाद दी है और वहाँ के आवाम के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की सताइश की है।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबूजबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ बातचीत करेंगे, जिसके नतीजे में भारत और मुत्तहदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकत दारी को एक नई सतह तक ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर बढ़ते हुए राबतों के बाद वज़ीर आज़म वहां के दौरे पर जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने इस साल जनवरी में नई दिल्ली का दौरा किया था और गुज़श्ता 10 साल में उनका भारत का 5वां और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की हैसियत से 3रा दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मीटिंग के दौरान किलीदी जाम नौयत की साझेदारी का तफसीली जायजा लिया और कई अहम समझौतों का तबादला किया। इनमें सबसे ज्यादा अहम किलीदी दिफाई शराकतदारी के लिए काम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाना भी शामिल है, जो कि दोनों मुल्कों के बाहमी सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स NDRF ने अपने 20 साल के मुख्तसर क्याम में ही मुल्क के 140 करोड़ अवाम का एतमाद जीत लिया है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि आफात से निपटने के सिलसिले में भारत एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है और दुनिया में इस तरह का कदम उठाने वाला सबसे पहला मुल्क है। वजीर दाखिला ने यह बात गाजियाबाद में NDRF को सदर का परचम दिए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब शाह ने कहा कि जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई आफत आती है या आने वाली होती है तो NDRF के अमले के वहां पहुंचने के बाद लोग राहत का सांस लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फोर्स को सदर का परचम मिलना निहायत फख्र की बात है। जनाब अमित शाह ने कहा कि सदर जम्हूरिया ने साथ ही साथ NDRF, SDRF, पंचायत, रियासती इंतजामिया, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों की खिदमात को भी सराहा है। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ज़राअत, डिजिटल बुनियादी ढांचा, हिफ्जान सेहत और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शराकतदारी तक भारत अफ्रीका इश्तराक का अगला मरहला आला कदर वाली मसनूआत और मरबूत सप्लाई चेन पर मबनी होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी मुजाकरात और नुमाइश और भारत अफ्रीका फोरम समिट के लिए तारुफी सेशन से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने उजागर किया कि कैसे भारत और अफ्रीका आलमी खित्ते जनूब के लिए सबकी शमूलियत वाला और इख्तरा पर मबनी मुस्तकबिल के साथ मिलकर तश्कील दे सकते हैं। भारत अफ्रीका कारोबारी डायलॉग और नुमाइश नई दिल्ली में इस महीने की 29 से 31 तारीख तक मुनक्किद होगी। इसके साथ ही चौथी भारत अफ्रीका फोरम समिट भी मुनक्किद होगी। भारतीय फौज और बहरिया ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद फौज की तीनों शाखों के दरमियान तआवुन और इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम करना है। इस पर भारत की फौज की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल VPS कौशिक, अजुटांत जनरल और भारत के बहरिया की तरफ से अमले के सरबराह नायब एडमिरल गुरचरण सिंह ने दस्तखत किए। वजारत दिफा ने बताया है कि समझौते पर दस्तखत किए जाने का मकसद फौज की तीनों शाखों के दरमियान इदारा जाती रब्त व जब्त बढ़ाना, फौज की तीनों शाखों के दरमियान तालमेल को मुस्तहकम और मजबूत करना है। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मई की 10 और 12 तारीख के दरमियान विशाखापत्तनम में मशरकी बहरी कमान का दौरा किया। इस मौके पर बहरिया के सरबराह ने कमान के तहत की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक तरबियती, फौजी और इंतजामी सरगर्मियों का जायजा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 3 रोजा सरकारी दौरे पर चीन में हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमराह अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफ्द भी मौजूद है। 2 बार की ओलंपिक तमगा हासिल कर चुकी पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़रा खारजा की 2 रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग, तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीजिए पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: डॉक्टर यूसुफ रामपुरी साहब, जो कि मुल्क के जाने माने कलम निगार हैं, कई अहम किताबों के मुसन्निफ हैं। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में आप उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब, एक मुतरजिम के हवाले से बहुत सी अहम किताबों का तर्जुमा किया है आपने, कई अहम किताबों के मुसन्निफ हैं।
1: शुक्रिया।
0: आप एक अफसाना निगार भी हैं और शायर भी हैं। आपके शेरी मजमुआ भी शाया हुआ है, अफसानवी मजमुआ भी शाया हुआ है, और उर्दू सिखाने के लिए भी आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं। हमारी बहुत ही मोहतरम मेहमान आज की मोहतरमा सबीहा फजल साहिबा हैं। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है मोहतरमा सबीहा फजल साहिबा का। एक एंकर की शक्ल में, एक प्रेजेंटर के रूप में आपकी अच्छी खासी शोहरत है, और ये जो हमारी उर्दू शायरी है और इसके जो रंग हैं उन पे भी मोहतरमा सबीहा फजल की बहुत गहरी और अच्छी निगाह है, उन तमाम रंगों पे वो नजर रखती हैं। आइए आज की इस गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं, उर्दू शायरी ने हर मकाम पे हमारे दिलों में वतन से मोहब्बत के जज्बे को बेदार किया है। इतने रूप हैं कि इस पे कई मकाले लिखे गए हैं, कई किताबें लिखी गई हैं, हजारों सफात पे इसके रिसर्च यूनिवर्सिटीज के शोबों में हुआ है इस मौजू पे कि उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के कितने रूप हैं।
2: जी,
0: आइए आज की इस गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब से करते हैं और देखते हैं कि उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के ये रंग किस किस रूप में हमारे सामने हैं।
1: आपने बजा फरमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौमी यकजहती और यगानगत की जो है अपने आप में एक मिसाल है। और किसी भी सिंफ के हवाले से अगर आप बात करें, या पूरा एक दौर है उर्दू शायरी का, आप अमीर खुसरो से अगर हम लेते हैं, तो सबसे पहले अगर कौमी यकजहती की या इत्तिहाद की बात अगर की है तो वो अमीर खुसरो, मैं समझता हूँ अमीर खुसरो हैं, और वहीं से एक सिलसिला शुरू होता है, कुली कुतुब शाह तक आता है। कुली कुतुब शाह से सिराज औरंगाबादी हैं आपके, और फिर सबसे बड़ा नाम हमारे सामने जो है नज़ीर अकबर आबादी का है। नज़ीर अकबर आबादी मैं समझता हूँ कि इस तरह का शायर है कि दूसरी जबानों में भी इस तरह का शायर नज़र नहीं आता, और जिस तरह उन्होंने नज़मों में भी जो है हिंदुस्तानियत को ख़ास तौर से पेश किया है। होली के ऊपर उनकी तीन नज़में हैं, बरसात की बहारें हैं। नज़ीर अकबर आबादी का तो इतना बड़ा नाम है कि उसको हम फरामोश ही नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हैं आपके गालिब भी आते हैं, इकबाल हैं, एक तवील सिलसिला है। हाली का भी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी खास नज्म है जैसे कि हुब्बे वतन है। कुछ शेरों का जो है यहाँ पे हवाला दे तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है इस मौके पे कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या के हो ब्रह्मू, जाफरी हो या के हो हनफी, जैन मत हो या हो वैष्णवी। इसी तरीके से गालिब के यहाँ भी, इस तरह जब हम गालिब को देखते हैं तो गालिब के यहाँ भी बेशुमार, जैसे कि उनका शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को ही मैसर नहीं इंसान होना। तो जाहिर सी बात है पूरा ही पैगाम दे रहा है ये शेर इंसानियत का, कौमी यकजहती का। और इसी तरीके से चकबस लखनवी का अगर हम नाम लें तो उनका भी जो है दर्द दिल पासे उफा, जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना, और जिंदगी क्या है नासिब में जहूर तरतीब, मौत किया है नीहज्जा का परेशान होना। तो एक तवील सिलसिला, चाहे वो हम साहिल लुधियानवी की बात करें, ए शरीफ इंसानों की बात करें, या जमील मजहरी साहब की बात करें, उनके यहाँ एक शेर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेरी गोद में भाई भाई, छुट्टियों में तेरे बादल के, साए में तेरे आंचल के, मस्जिद गिरजा और शिवाला, लंका से ताकोहे हिमाला, गंगा और जमुना की रवानी, कहती है माता तेरी कहानी।
0: बड़ी मशहूर नज्म है भारत माता।
1: भारत माता उनकी बहुत मशहूर नज्म है। या फिर कैफी आजमी की हम बात करें, और साहिल लुधियानवी की, ए शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। अब ये इस तरह की पूरी तवील नज्म है, मतलब और भी शेर इसके जो है इस तरह के हैं कि पूरी एक पैगाम दे रहे हैं जो है।
0: जी बिल्कुल, यूसुफ साहब जैसे मुस्तमिर साहब जो बात कह रहे हैं, बहुत सारे शायरों का कलाम आपने पढ़
3: दिया। जी जी, जहाँ तक शायरों की बात है तो अगर हम उर्दू शायरी के मिजाज को देखें और उर्दू शायरी के आगाज और इर्तिका की पूरी कहानी के ऊपर हम निगाह डालें,
0: जी हाँ,
3: तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उर्दू शायरी के खमीर के अंदर ही यगानगत और उखुवत और यकजहती मौजूद।
0: ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं।
3: इसलिए मैं समझता हूँ उर्दू का कोई भी शायर यगानगत और इत्तिहाद को, उखुवत को और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। इसलिए हम देखते हैं कि जो अहम शायर है, किसी भी शायर की शायरी को उठाकर देखें, उनकी गज़लों को पढ़ें, तो हर गज़ल में एक दो शेर जो है वो उखुवत का

0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: मोहब्बत का और यकजहती का नजर ही आ जाएगा।
0: जी हाँ।
1: दूसरी बात यह है कि उर्दू शायरी का जो आगाज हुआ है उसमें हमारे सूफी हजरात ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो जिस शायरी का आगाज या जिस शायरी की तश्कील सूफी हजरात के जरिए या उन हजरात के जरिए हो रही हो जो इंसानियत की बात करते हैं, मेल जोल की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस शायरी के अंदर खुद ब खुद ये आमेजिश यानी यगानगत की आमेजिश हो जाती है। इसलिए उर्दू शायरी को हम इस नुक्ते नज़र से बहुत मालामाल कह सकते हैं। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। तो ये जो है उर्दू शायरी का मिजाज और उसकी शान।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूसुफ साहब जो बात कह रहे हैं कि बल्कि उर्दू शायरी ने उससे आगे बढ़कर एक कदम मोहब्बत का जो एक पैगाम दिया है वो आफाकी पैगाम है। और इसीलिए इस मुल्क में हमारे जो खूबसूरत हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जिस पे हम नाज करते हैं, जिस पे हम फख्र करते हैं, हर मजहब, हर कौम, हर तरह की जबान बोलने वाले लोग यहाँ पे, जबानों का अजायब घर कहा गया, लेकिन एक चीज जो हमें जोड़ के रखती है जिसको हिंदी में हम भारतीयता कहते हैं, वो हिंदुस्तानियत जो है वो बड़ी चीज है। और वो हिंदुस्तानियत इस उर्दू शायरी में रची बसी हुई है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये वो उर्दू शायरी है जिसमें कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये कहने वाला कौन है? कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं ये बात। लेकिन यहाँ वो भी मौजूद है कि जब मखदूम मोहिद्दीन शायरी करता है तो नील तन कृष्ण के पहलू में मचलती हुई गोपियाँ याद आ जाती हैं, जब हसरत मोहानी बरसाना की होली का जिक्र करते हैं, जब नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि अब आगे बात जन्म की है बोलो कृष्ण कन्हैया की, तो ये भी वही उर्दू शायरी है जिसमें हर रंग हमको देखने को मिलता है। और जब एकजहती की बात करते हैं तो ये बात ही वहाँ होती है कि ये पूरा मुल्क हमारा हमको एक मोहब्बत के रिश्ते से जोड़ के रखता है। इसी सिलसिले को सबीहा फजल साहब के पास भी चलते हैं और आपके ख्याल।
3: देखिए, जब हम शायरी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायरी मुकम्मल इबारत है इश्क से और मोहब्बत से।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
3: तो शायरी को और मोहब्बत को या गानगत को या फिर उसे यकजहती कहें, उसे हम अलग नहीं रख सकते। और हमारे उर्दू शुअरा की जब हम तारीख देखते हैं तो जैसे अभी आपने जिक्र किया, उर्दू शायरी में कृष्ण भक्ति जगह जगह नजर आएगी। बहुत सारे शुअरा हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर इतनी खूबसूरत नज़में कहीं कृष्ण की भक्ति से सरशार के जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो ये एहसास नहीं होता कृष्ण के लिए इतने खूबसूरत जज्बात मुस्लिम कह रहा है। उसी तरह जब हम राम का जिक्र करते हैं तो राम को भी उर्दू शायरी में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बरता गया है। और एक और सबसे बड़ी जो बात जहन में उभरती है कि हम यहाँ पे चूंकि कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, तो जब हिंदुस्तान एक तवील अरसे से जद्दोजहद आज़ादी के दौर से गुजर रहा था,
2: जी हाँ,
3: उस दौर की अगर आप उर्दू शायरी का जायजा लेंगे तो जिस तरह से लोगों ने हर तौर पर आज़ादी हासिल करने के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेने के लिए अपने अपने तौर पर जो भी काम अंजाम दिए, जिस जिस तौर पर भी वो उसमें पेश पेश रहे, तो जो हमारे उर्दू शुअरा का जो किरदार है वो भी बहुत अहम नज़र आता है। उन्होंने उस दौर में कौमी यकजहती के तनाजुर में या फिर कहिए अपने मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन के तौर पर इतने खूबसूरत तराने लिखे, इतने खूबसूरत गीत लिखे, इतनी अच्छी नज़में कहीं और ऐसे अल्फाज में कहीं जो एक आम इंसान के जहन और दिल में घर करती थी। तो इतने आम फहम अंदाज में उस दौर में जो तराने लिखे गए, जोश और वलवले से भरपूर जो नज़में कही गईं, जो गीत लिखे गए, तो उसने भी हमारी जो जंगे आज़ादी थी उसको एक नया मोड़ दे दिया था बिल्कुल। और एक आम इंसान जो जहनी तौर पर उतना बेदार नहीं था, सियासी तौर पर उसका जो सोच थी वो उतनी ज्यादा वसी नहीं थी, वसीउल नजर ही नहीं थी, सिर्फ वो ये समझ रहा था कि हाँ हमें गैर मुल्की साम्राज्य से बाहर जाना है, हमें हमारे लिए अपनी हुकूमत कायम करनी है। किस तौर पर होगी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके नुकसानात हैं, उनको आम अंदाज में छोटी छोटी बहर की नज्मों के जरिए, गीतों के जरिए जब लोगों ने गाया, तो उस दौर का आप जायजा लेंगे तो लोग जो है जौक दर जौक सड़कों पर वो नज़में, वो तराने, वो गीत गाते हुए निकला करते थे और उस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी उर्दू शायरी का वो बहुत सुनहरी दौर है जिसने कौमी यकजहती को बढ़ावा दिया। ना कोई मजहब था, सिर्फ एक जज्बा था उन शुआरा के जरिए हमारे दिलों में वो लौ जलाई गई थी कि हमें ये काम हर सूरत में करना है, मादरे वतन को आज़ादी की नेमत से सरफराज करना है। और वो काम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस तरह से एक बड़े साम्राज्य से उसने टक्कर ली और किस तरह से माशाल्लाह आज हम न सिर्फ आज़ादी हासिल कर चुके बल्कि उस नेमत को हमने आज तक बरकरार रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उर्दू शायरी का ये एक ऐसा कारनामा है जिसे कभी हम भुला नहीं सकते।
2: सबिया फजल साहिबा, आपने क्या खूबसूरत गुफ्तगू की। वाकई 1857 से लेकर 1947 तक
3: जी
2: कम से कम 90 साल हमारी तारीख जद्दोजहद आज़ादी का उर्दू शायरों ने और उर्दू शायरी ने कितनी हौसला मंदी के साथ साथ दिया है, आपने पूरी तस्वीर पेश कर दी। और सच बात यह है कि सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। हम जब किसी रंग, कौम, नस्ल, मजहब से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तान की बात करते हैं, तब हम जब भारत माँ की बात करते हैं, वहाँ जाकर के कर चले हम फिदा, उर्दू का शायर लिख रहा है कैफी आज़मी कि कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो उसमें एक बात आती है कि लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन, कोई टिक नहीं सकता हमारी
3: एकता के सामने,
2: क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने। तो जब हम जंग आज़ादी के मैदान में थे, उस जंग में भी उर्दू के तरानों ने हमारा साथ दिया, और आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में जब हम तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तब भी ये उर्दू शायरी हमारा साथ दे रही है। यूसुफ साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने सूफिया का जिक्र किया
3: जी।
2: खुसरो पे आपकी किताब है। सच बात यह है कि जब उर्दू शायरी देखते हैं यूसुफ साहब, तो जितने हमारे मजहबी पेशवा हुए हैं, जब वो किसी मजहब के हों, उन पे उर्दू शायरी में नज़में और गज़लें और कलाम मिलता है। यहाँ गुरु नानक भी हैं, चिश्ती भी हैं, राम स्वामी राम तीरथ भी हैं। और इस मुल्क के बड़े हिस्से को मुतासिर करने वाली जो दो बड़ी शख्सियात हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दूसरे कृष्ण जी महाराज, आपने कृष्ण जी का नाम लिया। अब आप देखिए कि कृष्ण की भक्ति में डूब कर कैसे कैसे गीत गाए हैं गाने के लिए। हम प्रेम पुजारी हैं, तू प्रेम कन्हैया है, तू प्रेम कन्हैया है, ये प्रेम की नैया है, ये प्रेम की नैया है, तू इसक खिवैया है, कुछ फिक्र नहीं ले चल, लहिश कहीं ले चल। तो ये मस्ताना रवि जो उर्दू शायरी का अख्तर शिरानी इस तरह डूब के कहते हैं, तो पूरी एक तारीख भरी पड़ी है इससे।
3: इसी तरह से एक बात मैं यहाँ कहना हाँ। चाहूंगी, जैसे गंगा
2: जी हाँ बिल्कुल,
3: जो के जल जीवन है, हमारी लाइफ स्ट्रीम है, वो गंगा का जिक्र उर्दू शायरी में इतनी मर्तबा आया है, इतनी मर्तबा आया है, गंगा को हर हर तौर पर बरता गया है। हालांकि है वो सब की गंगा, एक फिरके को ज्यादा मोहब्बत है या ज्यादा अजीज है, उर्दू शायरी में गंगा को इतने खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया गया कि जिसके बारे में अल्फाज नहीं मिलते। और जैसे कि आपने कहा कि गीत लिखे गए उस जमाने में जो पैगाम देते हैं कौमी यकजहती का, तो उसी दौर में जब आप देखेंगे तो हमारे जो फिल्मसाज हैं उन्होंने कौमी यकजहती की इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं जहां पर कोई मजहब या किसी भी कौम का कोई फर्द नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी बनकर जब हम अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए एकजुट हो जाते हैं, सरहदों पर खड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ एक रंग होता है वहां पे, वो मोहब्बत का, कौमी यगानगत का और कौमी यकजहती का रंग होता है। बहुत सारी फिल्में उस दौर में बनी,
0: गीतों के तवस्सुल से भी जो है उस कौमी यकजहती को हाईलाइट किया गया
3: जी।
2: उन फिल्मों में जो नगमे हैं उर्दू शायरों के लिखे हुए नगमे, और उनमें कौमी यकजहती का बड़ा एक खूबसूरत शक्ल उभर करके हमारे सामने आती है।
1: बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम अपने शोरा में ऐसे शायर भी देखते हैं, मोहसिन काकोरवी का नाम
0: भी, डॉक्टर साहब उनका शेर संत काशी से चला जानी बे मथुरा बदल
2: जी हाँ।
0: बर्क के कांधों पे लाती है सबा गंगा जल। आप देखिए किस तरीके से, यानी के आजम, हिंदुस्तान और अरब तीनों तहजीबों को किस तरीके से उन्होंने जो है एक जंग मिला दिया है
2: हाँ।
0: और एक ऐसी खूबसूरत कौमी यकजहती की मिसाल हमारे सामने पेश कर दी है कि नातिया, पूरी उर्दू की नातिया शायरी में देखने को नहीं मिलती है।
1: इस कसीदे की खास बात यह है जिसका आप हवाला दे रही हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तीनों चीजों को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि बात हो रही है नात की, बात हो रही है मदह रसूल की, लेकिन वो हिंदुस्तानी तहजीब के
0: उस तनाजुर में।
1: जी जी
0: जी जी,
1: तो इससे पता चलता है कि हमारे शोरा के यहाँ यगानगत और यकजहती और यहाँ हिंदुस्तानियत जो है वो कितनी ज्यादा है कि वो किसी भी पस मंजर में बात कर रहे हैं लेकिन वो अपनी मिट्टी को जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं।
2: मुस्तमिर साहब, जो उर्दू शायरी में जो कुछ भी कौमी यकजहती के हवाले से बयान हुआ है, अगर कुछ अशार भी सुना सकें इस मौके से
1: چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو.
3: واہ بہت خوب.
2: چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے بات بنتی، ایک مصرے میں کیا بات کہتی قومی یکجہتی کے حوالے سے.
0: مثلاً جیسے کہ گوپال داس نیرج کہتے ہیں کہ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے.
3: واہ.
0: انسانیت کی اور محبت کی بات جو ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شاعر نے اس کا ذکر نہ کیا ہو.
3: ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے شفیع ایوب صاحب کہ ہندوستان جو ہے دنیا کے دیگر ممالک سے کافی حد تک مختلف ہے.
2: جی ہاں.
3: کیونکہ یہاں پر بے شمار مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، الگ الگ قومیں بستی ہیں، سب کے الگ الگ تیج تہوار ہیں. اور جب ایک شاعر، بلکہ شاعر نہیں ایک عام انسان کی ہم بات کریں کہ میری ہولی ہے، میں نے ہولی منانی ہے، آپ کا عید ہے یا بقرعید ہے، جو بھی، آپ اگر میرے تہوار میں اسی طور پر شامل ہو جاتے ہیں تو میری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہاں جب ہم اردو شاعری میں دیکھتے ہیں تو یہاں کے جو موسمی تہوار ہیں خاص طور پر، اس کے اوپر اردو شاعروں نے بڑی اچھی اچھی خوبصورت نظمیں کہی ہیں. جی چاہے وہ دیوالی ہو، چاہے وہ ہولی ہو، بسنت پنچمی ہو، رکشا بندھن ہو. جی جیسے جی امیر خسرو کا پھول رہی سرسوں، اتنا خوبصورت وہ کلام ہے کہ آپ اسے اگر پڑھیں گے، جہاں سنسکرت بھی ہے اردو بھی نظر آتی ہے، کہ ہم ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں جب شیر و شکر ہو کر ہم ہولی بھی منا رہے ہیں. ہولی کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، ہم سب لوگوں کی ایک ہی رنگ میں شرابور ہیں. عید کی سوئیاں میں بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، دیوالی کے دیے میرے ساتھ میرے پڑوسی بھی مل کر جلا رہے ہیں. جب بسنت ہم منا رہے ہیں تو بسنت کے کپڑوں میں پورا ہندوستان رنگ جاتا ہے. پیلے رنگ کی جو مٹھائیاں بن رہی ہیں وہ ہم سب ایک دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پیلے رنگ کے لباس جو زیبتن کیے ہیں سب نے، تو اس میں کہیں کوئی یہ فرق دکھائی نہیں دیتا کہ وہ پیلا لباس زیبتن کرنے والا ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کیا اس کا مذہب ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم نے ان تہواروں کو، ان رسموں کو، چاہے وہ موسمی تہوار ہوں یا یہ مذہبی تہوار ہوں، تو جب ہم نے ان کو اردو شاعری میں برتا اور اردو شاعری کے خوبصورت اشعار میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچی، تو اس سے ہماری جو قومی یگانگت تھی، جو بھائی چارہ تھا، جو ایکتا تھی، اس کو اور زیادہ بڑھاوا ملا.
2: بالکل بجا فرما رہی ہیں سبیہ فضل صاحبہ. واقعی سچ بات یہ ہے کہ وہ جو موسمی تہواروں کا ذکر آپ کر رہی ہیں، ان تہواروں کو مناتے وقت ہم صرف ایک ہندوستانی ہیں.
3: جی.
2: جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں یوسف صاحب، تو اس میں جیسا کہ بھی تہواروں کا ذکر کیا سبیہ صاحبہ نے، مستمر صاحب ذکر کر رہے تھے اردو شاعری کی فلموں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تو بات یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اقبال جیسا شاعر، بانگ درا کی پہلی نظم کیا ہے، وہ ہمالیہ ہے.
0: ہمالیہ.
2: تو جب ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ملک کے ہر شہری سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ملک کے گوشے گوشے سے محبت کرتے ہیں.
3: بے شک.
2: اور اردو شاعروں نے اسی لیے، وہ ہمالیہ پربت ہو یا گنگا ندی کا ذکر آپ نے کیا، گنگا ہندوستان کی سب سے پوتر ندی مانی جاتی ہے.
0: مثلاً علی سردار جعفری کی نغمہ جمہور دیکھیے.
2: جی ہاں.
0: وہ پوری کی پوری آپ اس کو دیکھیے.
2: اردو شاعری کا دامن تو بھرا ہوا ہے قومی یکجہتی کے ترانوں سے، نغموں سے، اس کلام سے. مستمر صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ اردو شاعری میں جس طرف نظر ڈالیں وہ کلام آپ کو نظر آئے گا. کچھ مستمر صاحب سے سن لیتے ہیں.
0: بیکل اسحاقی کا ایک بہت اہم نام ہے، تو ان کی ایک نظم ہے ایکتا کی آواز، قومی یکجہتی کے تعلق سے ہے.
3: جی.
0: خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو، خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو، مسافرو چلو عزم گراں کے ساتھ چلو، اور زمانہ ساتھ چلے، انجمن بھی ساتھ چلے، بہار چومے قدم باپن بھی ساتھ چلے، وہ عزم ہو کہ جسے زندگی سلام کرے، قدم قدم پہ سکون جشن اہتمام کرے، وطن کی لاج بنو، قوم کا نکھار بنو، ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بنو، قسم وطن کی تمہیں ایکتا کے گن گاؤ، دلوں میں عظمت قوم و وطن کو چمکاؤ، قدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے، جہاں بھی چاہو وہیں منزل حیات بنے، ہو ایک دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو، چلو تو راہ حوادث میں مسکرا کے چلو، خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو. اس طرح سے جو ہے یہ پوری جو نظم ہے، پوری جو ہے اتحاد اور قومی یکجہتی کا ہمیں جو ہے سبق دیتی ہے، آگے بڑھنے کا دیتی ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی جو ہے قدم سے قدم ملا کے چلیں. اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری نظمیں ہیں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو اور سلطانی یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ. دیکھیے شعر میں دیکھیے جو ابھی آپ نے جنگ آزادی کی بات کری وہ تمام

सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। नमक पर टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने यह तहरीक गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की। 385 किलोमीटर का फासला तय करते हुए नौसारी जिले के डांडी नामी गांव तक और नमक बनाकर उस एक्ट को तोड़ा जो अंग्रेजों ने हम पर थोप दिया था, जिसके नतीजे में बरतानवी हुकूमत को नमक का ये जारहाना कानून वापस लेना पड़ा। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार सैफी ने।

0: करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमरा अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतह वफद भी हैं। सनत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ज़राअत डिजिटल बुनियादी ढांचा हिफ्ज़ाने सेहत और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शराकतदारी तक भारत अफ्रीका इश्तराक का अगला मरहला आला कद्र वाली मसनूआत और मरबूत सप्लाई चेन पर मबनी होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी डायलॉग और नुमाइश और भारत अफ्रीका फोरम समिट के लिए तारुफी सेशन से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने उजागर किया कि कैसे भारत और अफ्रीका आलमी खित्ते जनूब के लिए सबकी शमूलियत वाला और इख्तरा पर मबनी मुस्तकबिल के साथ मिलकर तश्कील दे सकते हैं। भारत अफ्रीका कारोबारी डायलॉग और नुमाइश नई दिल्ली में इस महीने की 29 से 31 तारीख तक मुनक़िद होगी। इसके साथ ही 4थी भारत अफ्रीका फोरम समिट भी मुनक़िद होगी। भारत की फौज और बहरिया ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद फौज की तीनों शाखों के दरमियान तआवुन और इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम करना है। इस पर भारत की फौज की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक, एडजुटेंट जनरल और भारत की बहरिया की तरफ से अमले के सरबराह नायब एडमिरल गुरचरण सिंह ने दस्तखत किए। वजारत दिफा ने बताया है कि समझौते पर दस्तखत किए जाने का मकसद फौज की तीनों शाखों के दरमियान इदारा जाति रब्त जब्त बढ़ाना, फौज की तीनों शाखों के दरमियान तालमेल को मुस्तहकम और मजबूत करना है। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मई की 10 और 12 तारीख के दरमियान विशाखापट्टनम में मशरकी बहरी कमान का दौरा किया। इस मौके पर बहरिया के सरबराह ने कमान के तहत की जाने वाली कार्रवाई से मुतालिक तरबियती फौजी और इंतजामी सरगर्मियों का जायजा लिया। बहरिया के सरबराह ने खलीज में मशरकी बेड़े पर भी एक दिन गुजारा। एडमिरल त्रिपाठी ने चैलेंज के हालात के दौरान बहरी अमले की पेशेवराना सलाहियत, सरगर्मियों, तालमेल और कार्रवाई करने की उनकी तैयारियों की सताइश की। रूस ने कल शाम यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें मगरबी खित्तों में नेटो सरहदों के करीब अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने 800 के करीब ड्रोन दागे हैं और बाद में मिजाइलों से भी हमला किया। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला इत्तेफाकिया नहीं था। उन्होंने कहा कि रूस ने उसका अब तक का सबसे बड़ा हमला ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका के सदर चीन का दौरा कर रहे हैं। 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की खिलाड़ी को 21-13, 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2 रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग, तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सरे फहरिस्त रहे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप

हुणे तुसां इह सराइकी गीत सुणदे पए हवे ते इह है तुहाडी सेवा विच सराइकी प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ बातां कुछ गीत तुहाकू किंजदा लगा साकू खत घाल के दसना ते हुण हरजीत कौर को इजाजत देवो।

सिंपल भाषा च सिंपल शब्दां च जाग लगा के बनाए गए पदार्थ भी दस सकते हाँ। एदे विच साडे कोल दही लस्सी एहो जे प्रोडक्ट आ जाते हैं जेड़ा कि साडे पाचन क्रिया लई भी बहुत जरूरी हैं। चौथी कैटेगरी साडे कोल फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती है। फ्रोजन नूं असी सिंपल शब्दों च कह दिंदे हाँ कि जेड़े बहुत ही नीचे तापमान ते बनाए गए उत्पाद होन। इन्हां विच साडी कुल्फी या आइसक्रीम वर्गे पदार्थ आ जाते हैं। चौथी या पंजवीं साडी शेडिंग जिहड़ी रह जाती है वह रहिंदी है कि फ्लेवर डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्लेवर डेयरी प्रोडक्ट्स एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिहदे च दुध विच ही थोड़ा जिहा उहदे च फैट कढ के ते अलग अलग फ्लेवर पा के उसदी जिहड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है उसनूं वधा दित्ता जावे। कई लोग जिहड़े सिंपल दुध पीना पसंद नहीं करते ते उन्हां लई इहो जिहे प्रोडक्ट जिमें कि इलायची फ्लेवर्ड कोको फ्लेवर या कोई होर फ्लेवर पा के इहो जिहे प्रोडक्ट नूं बाजार विच आराम नाल वेचिया जा सकता है। छेवीं ते लास्ट श्रेणी जिहड़ी मैं अज गल करांगी जिहड़ा मेरा फोकस ऑफ इंट्रस्ट भी रहिंदा है वह हो जाता है संयुक्त डेयरी उत्पाद। संयुक्त डेयरी उत्पाद तो साडा भाव है जिहदे विच दुध दे नाल नाल या तो अनाज या फल या कोई सब्जी पा के उस प्रोडक्ट नूं बनाया गया होवे। हुण इन्हां प्रोडक्ट इन्हां चीज़ां नूं पाउण नाल दुध दी शेल्फ लाइफ तो वधदी ही है बट जेकर तुसीं ध्यान दोगे तो कदे भी अनाज पाउण नाल या फल पाउण नाल या फ्रूट पाउण नाल किते ना किते तुहाडा जिहड़ा मुनाफा है वह भी वध जांदा है क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा प्राइस है इन्हां दा जिहड़ा मुल है वह दुध नालों किते घट है। किलो गाजरां दा मुल देख लो किलो तुसीं अनाज दा मुल देख लो या किसे सब्जी दा मुल देख लो वह दुध नालों किते घट हुंदा है। तो अजिहे प्रोडक्ट विच इन्हां चीज़ां नूं पाउण नाल प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ तो वधदी ही है बट उसका जिहड़ा मुनाफा है वह किते वधेरे वध जांदा है। अगे असी गल करांगे कि पैकेजिंग का साडे जिहड़े डेयरी उत्पाद ने उन्हां उपर की असर पैंदा है। पैकेजिंग का की रोल है पैकेजिंग किवें सानू सहायता करती है कि डेयरी उत्पाद के जिहड़े मुनाफे है उन्हूं किवें वह तिगना या चौगना कर दिंदी है। जिवें कि तुसी सुनिया ही होना है कि पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन का काम करती है। वह किवें पैकेजिंग सिर्फ साडे कोल प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ वधाउण का काम नहीं करती है एक स्रोत है एक किस्म का जरिया है जिदे नाल असी प्रोडक्ट नूं उत्पाद नूं एक पास्यों दूजे पास्यों लैके जा सकते हाँ। इस दे नाल ही यह बैक्टीरिया रोशनी हवा इन्हां सारियां चीज़ां तो दुध के उत्पाद नूं उसकी सांभ संभाल विच साडी मदद करदी है। इस दे नाल ही पैकेजिंग दे उपर दित्तियां गईयां इंस्ट्रक्शनां कि किवें इस चीज़ नूं वरतना चाहीदा है इस चीज़ दी किन्नी मुनियाद है किन्नी एक्सपायरी है किन्नी बेस्ट डेट है ते इस विच की पाया गया है यह सारियां ही चीज़ां एक कस्टमर नूं एक जिहड़ा खरीदन वाला बंदा बाजार च जांदा है उसनूं इह दसदियां ने कि इस विच की पिया होया है कि उह इस चीज़ नूं वरत सकदा है ते किन्नी क देर इस चीज़ नूं रखिया जा सकदा है बिना खराब होए। यह सारा काम जिहड़ा है साडा पैकेजिंग है ते इसे करके असी कह दिंदे हां कि जिहड़ा पैकेजिंग है साडी एक साइलेंट सेल्समैन दा काम करदी है। अज असी गलबात यह भी करांगे कि साडी यूनिवर्सिटी गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंसिज यूनिवर्सिटी किवें यह सारे उत्पादों लई बनाउण लई सिखलाई लई किवें सहाई हो रही है किवें किसानां दी मदद कर रही है। अज मैं इस शो राही दसना चाहवांगी कि कॉलेज ऑफ डेयरी अते फूड साइंस विच असी समय समय अनुसार बहुत सारे सिखलाई जिहड़े कोर्सिज़ है उह कराने हाँ। यह सिखलाई कोर्सिज यह ट्रेनिंग्स दो भागों विच वंडी हुंदी है। एक जिहड़ी सिखलाई कोर्स है जिहड़ा असी कि 5 दिनां लई करवाने हाँ ऑलमोस्ट 3 to 4 महीनों बाद असी यह कोर्स करवा दिंदे हाँ ते इहदे च साडे कोल बहुत ज़्यादा रश भी आंदा है बहुत सारे किसान साडे कोल आंदे ने ते उहदे च घटो घट 13 या 14 प्रोडक्ट असी 5 दिनां दे विच उन्हां नूं उसदी थियोरी भी दसदे हाँ उसदे प्रैक्टिकल भी दसदे हाँ ते बहुत ही वधिया तरीके नाल साडे जिहड़े उद्यमी किसान ने डेयरी किसान ने उह सिख के जांदे हन। इह जिहड़ी ट्रेनिंग है जे असी इहदे रेट दी गल करिए ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਏ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स

0: सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज MSV हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: An Indian डो
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: तो पायल बहन हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के, और भाई अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां लाते रहते हैं और मनोरंजन भी करवाते रहते हैं। और देखा जाता है कि भाई अब जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने गेहूँ की जो फसल है उसकी कटाई और गहाई देखिए कर ली है पायल बहन, और ये जो आपके थ्रेसर होते हैं कंबाइन होती है, अब ये यंत्र जो है अब कम से भी कम कुछ भी नहीं तो 8 महीने के लिए कम से कम
0: रख दिए जाएंगे। भाई ऑफ सीजन हो गया है, काम पूरा हो गया है, और काम पूरा होने के बाद जो ये यंत्र हैं भाई रखे ही जाते हैं क्योंकि इनका अब कोई काम आगे आने वाला नहीं है। तो इसलिए भाई ज़रूरत है कि अपने यंत्रों को आप संभाल के रखें, है ना, क्योंकि अगली बार भी जब आपका जो काम पड़ेगा तो आपको इतनी परेशानी ना हो, पैसा खर्चा ना करना पड़े, लागत ज़्यादा ना लगानी पड़े और ठीक ठाक इनको रख सकें हमारे किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, और इसकी और अधिक जानकारी के लिए भाई हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए कुछ विस्तृत जानकारी लेकर गए हैं कृषि यंत्रों का रख रखाव और कंबाइन और थ्रेसर की ऑफ सीजन सर्विस, जिसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आदर्श कुमार, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो लेते हैं पायल बहन ये जानकारी।
2: नमस्कार किसान भाई बहनों, हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आते हैं, चाहे वो फसलों से संबंधित हो, पशुओं से संबंधित हो, या कृषि यंत्रों की बात करें, या उनके रख रखाव की बात करें, या मौसम के अनुसार फल सब्जियों की बात करें। ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होते हैं। किसान भाई बहनों, फसल की कटाई के बाद अक्सर हम कृषि यंत्रों को एक कोने में रख देते हैं, लेकिन सही देखभाल न होने पर यही यंत्र जल्दी खराब हो जाते हैं और अगली फसल में भारी खर्च का कारण भी बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कटाई के बाद कृषि यंत्रों की सही देखभाल कैसे करें, इनका समुचित उपयोग कैसे करें, और इस विषय के लिए बात करने के लिए हमारे बीच आज आए हुए हैं डॉक्टर आदर्श कुमार जी, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। कृषि यंत्र कौन कौन से होते हैं जो खास तौर पर कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं?
3: देखिए, कृषि यंत्र मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, निलाई गुड़ाई करने, दवाई का छिड़काव करने, उसके बाद कटाई के यंत्र, तो एक बहुत बड़ी रेंज है जो हमारे किसान भाई आजकल इस्तेमाल करते हैं। और आजकल भारत के खेतों में कृषि यंत्रीकरण बढ़ रहा है। आपने पूछा कि कौन कौन से यंत्र हैं, तो जैसे हम लोग बिजाई के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई के लिए कुछ मानव चालित यंत्र हैं या कुछ इंजन द्वारा चालित यंत्र हैं, आजकल बैटरी के द्वारा चलने वाले यंत्र भी उपलब्ध हैं। उसके बाद हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तब हम स्प्रेयर्स को इस्तेमाल करते हैं या डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यंत्र भी बहुत ज़्यादा आजकल कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं
2: जी।
3: उसके बाद जब हम कटाई की बात करते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत प्रचलित एक बहुत बड़ा उपकरण है जिसको कि हम कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो कटाई भी कर देता है, थ्रेशिंग भी कर देता है, और हमें किसान भाइयों को अनाज जो है डायरेक्टली मिल जाता है। जबकि पहले का ये था कि हम लोग काटते थे फसल को और उसके बाद थ्रेशिंग करते थे। अभी भी थ्रेशर्स का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो थ्रेशर भी एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन भारतीय खेतों पर है। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे किसान हैं वो रीपर का इस्तेमाल भी करते हैं जो कटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, रीपर हो, हैप्पी सीडर हो, या स्प्रे मशीन हो, या अन्य कोई उपकरण, ये हमारे खेती के या किसान भाइयों के सच्चे साथी भी होते हैं जो समय का भी बड़ा सदुपयोग होता है उनसे, तो इनकी रख रखाव करना बेहद जरूरी क्यों होता है?
3: बिल्कुल, ये जो मशीनें हैं इनके ऊपर किसान काफी पैसा खर्च करते हैं, तो इससे समय की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, और कई बार मान लीजिए हम बोलते हैं कि बारिश आने वाली है या मौसम खराब है, तो हम बहुत जल्दी से इस काम को कर सकते हैं। तो इनका रखरखाव इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मशीनें महंगी हैं और इनको हम साल में कुछ दिन इस्तेमाल कर फिर दूसरे सीजन के लिए रखते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसान भाई इन मशीनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब वो अगले सीजन में जाएंगे और जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो वो तब प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक तरह से आप उससे काम नहीं ले सकते, उनकी दक्षता कम हो जाएगी, उनका आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, और उस समय किसान भाइयों के पास समय की बहुत कमी होती है, तो वही रिपेयर जो है आपको बहुत महंगी पड़ेगी, और दूसरा आपके समय का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए जब आप मशीन को रख रहे हैं, जैसे अभी हमारी गेहूं का फसल

0: हुई है, तो जब हमारी जो मशीनें हैं उनको हमें भंडारण करना है, उनको रखना है। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार उन्हीं मशीनों को आप अच्छी तरह से चला के देख लीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि किसमें क्या कमी है और हमें कहां उसकी रिपेयर की आवश्यकता है। इस समय आपके पास समय है, आप रिपेयर जो कराएंगे वो बहुत सस्ते दामों पर हो जाएगी और आप आराम से तसल्ली से ये सारी रिपेयर कराकर उन मशीनों को अगले सीजन के लिए तैयार करके रख सकते हैं। अब जो रख रखाव आपने पूछा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगले सीजन में इनको तैयार कर लेंगे, हमारा व्यय बहुत कम होगा, समय की बचत होगी और इन मशीनों की दक्षता है वो बनी रहेगी, उनकी मतलब अभी एफिशिएंटली उन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, कटाई के बाद कृषि यंत्रों की सफाई भी बहुत जरूरी होती है, वो क्यों जरूरी है?
0: देखिए, कृषि यंत्र हैं, खासकर जो कटाई वाले यंत्र हैं, क्योंकि जब आप कृषि में काम करते हैं तो आप फसल और मिट्टी दोनों से ही डील करते हैं, और जब अगर आपके मशीनों के अंदर मिट्टी रह गई तो उनके अंदर एक वो है कि वो लोग नमी को सोख लेंगे, और जैसे ही वो नमी को सोखेंगे, और सारे यंत्र जो हैं वो धातु से बने हुए, ज्यादातर आयरन के ही बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, और जैसे ही वो नमी को सोख लेते हैं तो वहां जंग लग जाता है, और जैसे ही जंग लगेगा तो वो मशीनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं। तो उस पे आपको फिर वो जो मशीनें आप अगली बार इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, चाहे नट बोल्ट हों या और कोई कटिंग बार्स हों आपकी, तो अगर उनके ऊपर जंग लग गया तो वो उनकी अलाइनमेंट या उनका जो अच्छी तरह से चलना वो सारा बंद हो जाता है। तो हमें ये करना है कि हमें उसकी सफाई जो है वो गहन करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि उसके अंदर से सारा जितना भी फसलों का अवशेष है वो निकल जाए, मिट्टी वगैरह निकल जाए, तभी हम उसका भंडारण करेंगे। और मैंने आपको कहा उसको एक बार चला के देख लें, जहां रिपेयर की आवश्यकता है उसको कर लें, कोई बिजली के कंपोनेंट, इंजन के अंदर जहां जहां भी आपको कुछ कमी लगती है आप उसको ठीक करा लें और उसके बाद ही भंडारण करें। और जब आप रखेंगे तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वो इसको छत के नीचे रखें, क्योंकि ये सारी मशीनें महंगी हैं और पानी और धूप के संपर्क में आने पे कुछ इनके कंपोनेंट्स प्लास्टिक रबड़ के भी बने होते हैं, जब वो धूप के संपर्क में आते हैं तो वो खराब होने का डर हो जाता है। और जो बाकी मेटल के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, धातु के बने हुए हैं, उनके ऊपर पानी से नमी के अंदर वो खराब हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि छत के नीचे रखें या उसको तरपाल से ढक कर।
1: तो डॉक्टर, कृषि यंत्रों में ग्रीस और ऑयलिंग का क्या महत्व होता है?
0: हाँ, कृषि यंत्रों के अंदर बहुत सारी चीजें घूमने वाली हैं।
1: जी।
0: तो उसके अंदर आपको जहां भी घूमने वाली चीजें अगर उसके अंदर ऑयलिंग कर सकते हैं तो आप ऑयलिंग करिए, वहां पे निप्पल बने होते हैं उसके अंदर आप ऑयल डाल दीजिए तो उसके अंदर एक ल्यूब्रिकेशन बना रहेगा और उसके अंदर घर्षण कम रहेगा, तो वो जितनी भी घूमने वाली चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से आपकी काम करेंगी। आपने कहा कि जो ल्यूब्रिकेशन और जगह हमें करना है, मान लीजिए आपकी कटर बार है या कहीं कोई भी चीज जो आपकी ऐसे हिलती है उसके ऊपर आप कुछ ऐसा ऑयल या ग्रीस लगा दें जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे, तो उसके बाद वो अगले सीजन में आपको बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, आपको इनको रिपेयर या बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑयल और ग्रीसिंग का एक बहुत महत्व है सारी ही मशीनों में, ना केवल कृषि में, बल्कि जो भी मशीन कंपोनेंट घूमते हैं या जिनके अंदर, जैसे हमारी कटर बार्स हैं उसके अंदर एक मोशन होता है जैसे कि हम लोग अपनी कैंची की तरह करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम ग्रीसिंग कर देंगे तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा और वो बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह काम करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ही प्रचलित है तो उसका रखरखाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमारे किसान भाइयों को ये भी पता चलना चाहिए कि उसकी सही देखभाल कैसे की जाए।
0: देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर एक बहुत बड़ी मशीन है, सबसे बड़ी मशीन है, तो उसके अंदर बहुत सारे इंटेग्रल पार्ट हैं। उसके अंदर सबसे पहले पावर यूनिट है, जो इंजन है जो पावर देता है, उसके बाद आपका कटिंग यूनिट है, कलेक्शन यूनिट है, थ्रेशिंग यूनिट है, फिर बाद में उसके अंदर सीव्स लगी हुई हैं जो हिलती हैं, और बाद में पंखे के द्वारा जो भूसा है बाहर चला जाता है, अनाज आपका टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है, फिर अनाज को हम बाहर खींच लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि जब आपको उसको रखना है, हम उसकी बहुत ज्यादा अंदर तक तो नहीं जा सकते किसान भाई, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें, हवा मार के साफ कर लें कि जो फसल के अवशेष हैं वो हमें सब निकाल देने हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें ये देखना है कि हम जब इंजन की बात करेंगे तो हमें टैंक को फुल करके रखना है डीजल से, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर ना बैठे, क्योंकि अगर मॉइस्चर बैठेगा तो वो दिक्कत करेगा। इसी तरह से जितनी भी हमारी बेल्टें हैं, जितनी भी हमारे पट्टे हैं, उनका जो टेंशन है, उनका जो खिंचाव है वो बराबर होना चाहिए। बैटरी को आप अलग कर लें, अगर आप लंबे समय तक उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहे तो बैटरी को आप अलग करके रख लें, और बैटरी को एक जगह पे रख दें या उसी के अंदर रखें, बट आप उसको डिसकनेक्ट कर दें, और बीच बीच में चार्ज भी कर सकते हैं जैसे कि आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज ना हो। जगह अगर हम टायरों को देखते हैं तो टायरों को अगर आप उठा सकें और टायर फ्री रख सकें, अगर वो संभव हो तो करें, अगर वो संभव ना हो तो आप प्रॉपर टायर के अंदर प्रेशर डाल के रखें जिससे कि आपके टायर्स की जो कंडीशन है वो अच्छी रहेगी। इसी तरह से जितने भी आपके कन्वेयर हैं या थ्रेशिंग यूनिट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आप सफाई करके उसको रखें।
1: डॉक्टर साहब, कुछ कृषि संयंत्र ऐसे होते हैं जिनमें जंग लग जाती है, तो उनकी भी एक देखरेख अलग तरीके से की जाती है, कुछ सावधानियां बरती जाती है।

0: वो क्या क्या होती है?
1: हाँ, अगर आप इतना कर सकते हैं, अगर आपको जंग रोधक पेंट अगर आप इस्तेमाल करें, जो रेड ऑक्साइड हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक बार रेड ऑक्साइड लगा देंगे और उसके बाद प्रॉपर पेंट कर लें, अगर आप छोटी मशीन है, मैं बड़ी मशीन के लिए नहीं कह रहा, मान लीजिए थ्रेशर है आपके पास, उसका कवर है, उसके नीचे सिलेंडर का कवर है, अगर आप उसके ऊपर रेड ऑक्साइड कर और पेंट कर सकते हैं तो उनकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह मैं कहूंगा कि जहां आप नहीं कर सकते और जो वातावरण से ओपन में है कंपोनेंट्स, उनके ऊपर आप ग्रीस या तेल थोड़ा लगा दें, उससे उनका भी बचाव हो जाए।
0: और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, स्प्रेयर जिससे हम छिड़काव करते हैं, उसकी साफ सफाई और देख रेख भी महत्वपूर्ण होती है किसान भाइयों के लिए, तो उसको कैसे रखना है
1: हाँ,
0: ध्यान
1: देखिए,
0: में?
1: स्प्रेयर भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, क्योंकि केमिकल का छिड़काव करते हैं और उसके अंदर नोजल है, पाइप्स हैं, पंप है, तो उसका भी रख रखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो जैसे हमने एक बार स्प्रेयर को इस्तेमाल कर लिया है, तो हमें यह है कि उसके अंदर पानी डाल के एक बार उसको चला लें, जैसे उसका सारा केमिकल जितना भी उसके अंदर है उसको अच्छी तरह से धो लें तो वो निकल जाएगा, और उसको उसके बाद धूप में रख दें जैसे कि वो सूख जाएगा। और उसके बाद मैं ये कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के कंपोनेंट भी हैं और मेटल के कंपोनेंट भी हैं,
0: जी
1: तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसको धूप से दूर रखें और आप किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहां छत हो और जिससे कि उसके कंपोनेंट जो हैं, पाइपें हैं या नोजल वगैरह है, वो खराब ना हो और कहीं पे रस्टिंग ना हो, जंग जैसे वो ना लगे। तो हमें उसकी साफ सफाई करके रखनी है, मतलब उसको एक बार हम पानी से चला लें अच्छी तरह से, फिर सुखा लें और फिर उसके बाद हम उसको रखें।
0: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि कृषि यंत्रों की देखभाल में सरकार या कृषि विभाग की भी कोई भूमिका होती है?
1: रख रखाव में तो इतनी भूमिका है, इस्तेमाल की ट्रेनिंग देते हैं काफी यूनिवर्सिटीज भी, इंस्टीट्यूट भी, सरकारें भी, तो उसके अंदर ये भी बताते हैं कि इनका रख रखाव कैसे करना है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, लेकिन हमने उसके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है, तो जितना हम अच्छी तरह से रख रखाव करेंगे वो उतना ही लंबे समय तक आपको अच्छी सर्विस देंगे, तो इसलिए हमें उसका रख रखाव करना है।
0: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कटाई के उपरांत या और भी बहुत सारे ऐसे कृषि यंत्र होते हैं जिनकी देखभाल बहुत जरूरी है, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, मैं यही कहूंगा कि आपने देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद आपने अभी कटाई हुई और इतने सारे आपने यंत्रों का इस्तेमाल किया, अब आपको देखना है कि ये यंत्र आपको लंबे समय तक आपका साथ दें, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया हो, तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है। हमें साफ सफाई अच्छी तरह से करनी है, उनको रखना अच्छी तरह से है, मतलब मैं यही दोबारा बोलूंगा, क्योंकि आप उनको छत के नीचे रखें या ढक के रखें, तरपाल के नीचे रखें, जो भी उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका भी ध्यान रखना है। मैं और ये भी बोलूंगा कि कई बार क्या होता है कि चूहे घुस जाते हैं, कि मान लीजिए अगर वहां दाने पड़े हुए हैं तो कई बार वो तारों को भी काट देते हैं, बड़ी मशीनों का या कहीं भी जहां पे भी बिजली की तारें उसके साथ गई हुई है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो उनको आप ध्यान रखिए कि अगर आप साफ रखेंगे तो ना केवल आप इन मशीनों को बचाएंगे बल्कि इन जो और दूसरे जीव जंतु हैं उनसे भी बचाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का अगर किसान भाई ख्याल रखेंगे तो आप लंबे समय तक अच्छी तरह उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते।
0: जी, तो किसान भाई और बहनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि कटाई के बाद कृषि यंत्रों की सही देखभाल न केवल उनकी उम्र बढ़ाती है बल्कि खेती की लागत को भी कम कर देती है। साफ सफाई, समय पर ग्रेसिंग, नियमित जांच और सुरक्षित रख रखाव, ये छोटी छोटी बातें आपके कृषि यंत्रों को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे कृषि यंत्रों का रख रखाव कैसे किया जाए और कंबाइन और थ्रेसर की ऑफ सीजन सर्विस। और इस बातचीत में जो विशेषज्ञ थे वो थे डॉक्टर आदर्श कुमार, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रिकी संभाग और पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा शर्मा। तो भाई, ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को हमने दी और इसका निश्चित तौर पर जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो लाभ ज़रूर उठाएंगे।
3: बिल्कुल, और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं इंद्रपाल शर्मा की आवाज़ में ये रागनी।
4: लूप

0: न्यू बोला रहा इस भारत का सच्चा सेवक धरती पुत्र किसान से। बहुत ही सुंदर रागनी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुनी इंद्रपाल शर्मा की आवाज़ में। और निश्चित रूप से देखिए, भारत की तरक्की का रास्ता खेत खलियानों से ही होकर जाता है।
1: बिल्कुल। और देखिए, इसी बात को लेकर भाई एक योजना हमारे सभी जो बहन भाइयों को, जो कि है डिजिटल कृषि मिशन, यानी कि एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की एक अतुल भाई प्रमुख योजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना और किसानों के जीवन को सशक्त बनाना है। यह मिशन 2,817 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत किया गया है।
0: बिल्कुल। और देश के हर किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जा रही है। पायल बहन, इसमें जो किसान की भूमि है, फसल है, मिट्टी है और सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है, एक ही जगह सुरक्षित रहेगी।
1: बिल्कुल। और देखिए, पारदर्शिता और दक्षता तो इसमें है ही, यानी कि सरकारी योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि सब्सिडी, फसल बीमा का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधा किसानों तक पहुंचाया जाता है। और बेहतर निर्णय प्रक्रिया है, सटीक मौसम पूर्वानुमान जो है, मिट्टी की सेहत और बाजार की कीमतों की जानकारी से किसानों को सही फसल चुनने में मदद मिलेगी।
0: बिल्कुल। और देखिए, यही है कि जो योजना और कृषि सेवाओं से जुड़ी आप अधिक जानकारी के लिए और जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। अधिक से अधिक इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो वेबसाइट है, आप उसे सर्च कर सकते हैं गूगल पर और वहाँ पर आप जाकर पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहते हैं पायल बहन, हम तो अपने सभी किसान बहन भाइयों से कि देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और भाई गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने खेत पर जाएं तो भाई अपने साथ पानी और सर पर चादर लेकर के जरूर जाएं।
1: बिल्कुल, गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल भरपूर रखें।
0: बिल्कुल। और भाई अपने साथ अपने पशुओं का भी रखें, पशुओं को भाई ताजा पानी पिलाएं और शुद्ध चारा खिलाएं।
1: बिल्कुल। और छाया में हो सके तो ज्यादातर बांधें, उन्हें धूप में ना रहने दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धूप में ना रखें और छायादार वृक्ष के नीचे बांधें। और देखिए, अब घड़ी की सुई भी पायल बहन इशारा कर रही है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने की। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गज़ल। गज़ल के इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। यूं बेरुखी से जब तुमने हमें देखा, सांसें रुक गई, दिन ठहर गया, समय गुजरता गया, लेकिन वो प्यार अब भी बाकी है। तमन्ना है कि एक बार फिर देखूं और फिर वो प्यार एक नए फूल की तरह सामने आ जाए।

दर्द में डूबे जिंदगी को सुकून मिल जाए, घर तेरा दीदार हो जाए। मालूम है हमें कि इस दर्द की वजह तुम हो, लेकिन दिल मानता कहाँ है।

दिल के इस आईने में कुछ तो है, अगर कुछ नहीं तो तुम।

अभी आप सुन रहे थे गजल का कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों

0: के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस चरण के अंतर्गत दिल्ली में 7 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16.99 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में जोरबाग से मीठापुर तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर जसोला, अपोलो, लाजपत नगर, NSIC ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा और आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 35 यात्रियों की क्षमता वाली 2 हाइड्रोजन फ्यूल बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें GPS ट्रैकिंग और CCTV की सुविधाएं होंगी। ये बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेंगी। DMRC के अनुसार ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब यात्री रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच सुगम और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर, लिफ्ट, मूविंग वॉक, CCTV और पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। कल से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के ईंधन आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री की 7 अपीलों से प्रेरित है।
2: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
2: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल

0: दिया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर लिया गया है। श्री सूद ने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के साथ सीधा संवाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के सभी 28 शिक्षा जोन में कुल 11 ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। अगला ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि NDMC क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। श्री चहल ने बताया कि कल से NDMC कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस सेवा शुरू होगी, जिसे सोमवार से 14 अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट दी जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए लोगों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और यातायात कम करने के लिए नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में श्री वाही आज मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज डॉ BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संधू ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो एक शैक्षणिक यात्रा के समापन और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जन सरोकारों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और तकनीक के माध्यम से विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। श्रीमती गुप्ता ने छात्रों से करुणामय बने रहने का अनुरोध किया।
2: 14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ संपन्न हो, लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाला है। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है। इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कम्पैशनेट भी रहिए।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार किसानों से दूध खरीद लागत में करीब 6%

0: सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना वैध प्रेस्क्रिप्शन और दस्तावेजों के इन दवाओं की अवैध सप्लाई और वितरण कर रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं संपत्ति ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी बरामद की है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रानी बाग इलाके में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रानी बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। बाहरी जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने देश भर में पिछले 24 घंटों में 14 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को आज दिल्ली के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इस अभियान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:15। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत, जिसे लेकर आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ, चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसे स्वरों से सजाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने, और गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म साथी से और इस गीत को लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने और ये जो कलाकार हैं गायक कलाकार इसमें हैं अनुराधा पौंडवाल। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं एक और गीत फिल्म आराधना से।

0: उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा पूरा तुम्हें करना होगा, करोगी ना?
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है दिल से। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी। गीत रचना है गुलजार की और संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है जहर। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और संगीत दिया है रूप कुमार राठौड़ ने।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आगे आइए सुनते हैं एक और फील, एक और गीत जिससे हमने लिया है फिल्म यमला पगला दीवाना से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और निंदक, और गीत रचना है आनंद बख्शी की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म यमला पगला दीवाना से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म यहूदी से। गीत के बोल हैं, ये मेरा दीवानापन है। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: यहूदी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म ज्वार भाटा से। ये 1973 प्रदर्शित फिल्म है और इसके जो गीत रचना है वो बहार फिल्म्स की, और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।
1: समझो और समझाओ थोड़ी

गीतमाल का फिल्म संगीत में आप बने हुए हैं चेतन के साथ और सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यानी कि कार्यक्रम की जो अंतिम प्रस्तुति है वो हम सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है दो रास्ते और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, सुंदर, अपने समय का बहुत ही मशहूर गीत दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने

0: आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को

0: दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive revision phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth.

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं। अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के ज़रिए और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में 9:20 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम एक फ़नकार के तहत शशि लता वर की आवाज़ में शमीम जयपुरी, सबा अफगनी, पारसा जयपुरी और सबा अफगनी की लिखी हुई गज़लें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। रात 10 बजे प्रोग्राम हरफ़ सुखन के तहत आज आप सुनेंगे गज़ल के मुख्तलिफ अंदाज।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम की तरह सुनते हैं शशि लता वर की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़लें।

0: सामिन, अभी आप सुन रहे थे शशि लता वर्क की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़लें। इसी के साथ प्रोग्राम एक फ़नकार अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर V.D. Sathisan ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए बाकायदा दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस खोले जाने पर जोर दिया। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तिसादी मज़ाहमत को बढ़ाने और मजीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील देने के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफ्द के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। यह मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनक्किद हुई। इससे कबल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा डॉक्टर S.J. Shankar ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात इक्तिसादी गैर यकीनी की सूरतेहाल और तिजारत, टेक्नोलॉजी और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कोआत बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अदा करने वाला किरदार अदा करेगा। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। इंसानियत को अवलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स @20, मज़ाहमत, इख्तराआत, तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में असलाहत के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेज़ी के साथ बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारियों में से एक को मजीद तौसी देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आला सतही तबादला ख्याल के लिए कल अबूधाबी पहुंच रहे हैं। इस तबादला ख्याल में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ्फुज़ और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात में तेज़ी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबेन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तिजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावुज कर चुकी है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहमी तिजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि खुद किफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौइयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजमी हैसियत रखती हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कूच के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। वज़ीर मौसूफ ने खुद किफालत को न सिर्फ एक इक्तिसादी हदफ बल्कि एक कलीदी ज़रूरत भी करार दिया। जनाब सिंह ने कहा कि भारत अपने कौमी निज़ाम के अंदरून अहम नौइयत के दिफाई निज़ाम को वज़ा करे, तैयार करे, बनाए बरकरार रखे और उन्हें अपग्रेड करता रहे ताकि वो कलीदी नौईयत की खुद मुख्तारी हासिल कर सके। महकमा दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तारीखी कामयाबी करार दिया जिसने भारत की मुल्क में ही तैयार हथियारों और निजामों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज और तालमेल पर मबनी ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू किया जाएगा। इसे 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरहलावार मुनक्किद किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खित्ता, चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली, नीज, दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। केरलम में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनक्किदा मीटिंग में VD सतीसन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर रमेश चेन्नीथाला पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। केरलम में सीनियर कांग्रेस लीडर VD सतीसन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना दावा पेश किया। इससे कबल आज नई दिल्ली में कांग्रेस की कौमी क्यादत ने कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था। 4 मई को इंतखाबी नतीजे के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से ज्यादा तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में जारी तबादले ख्याल के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज्यादा अफराद जा बहक हो गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से जाए वकूफ़ पर पहुंचकर सर्वे करें। उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि वो हर 3 घंटे में मुआवजे की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट फराहम करें। तमिलनाडु में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी इदापद्दी पलानी सामी ने आज रियासती गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और SP वेलुमानी के जेर क़यादत AIADMK के अरकान कानून साज असेंबली में फूट पड़ने से मुतालिक एक उज़्रदारी उन्हें पेश की। साबिक वज़ीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर JCD प्रभाकर के साथ उठाएं। मामला यह है कि SP वेलुमानी के जेर क़यादत धड़े में AIADMK के 25 अरकान कानून साज असेंबली ने TVK सरकार को वोट दिया जो कि TVK सरकार के खिलाफ वोट न देने के OS मानियन के जरिए जारी की गई व्हिप की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाजराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इतफाक किया कि आबनाए हुरमुस को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आजादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके।

0: के। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुशाइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महाजराई के बजाय तआवुन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमूई खेल में अपनी काबिल जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के दो तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया और मजमूई तौर पर 314 किलोग्राम वजन उठाकर और क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम की जबरदस्त कोशिश के साथ दोनों ही मुकाबलों में भारत को तीसरा मकाम दिलाया। अजीत की इस कोशिश से इस चैंपियनशिप में भारत को 3 तमगे हासिल हो गए। पीर को खवातीन के 48 किलोग्राम के जुमरे में कोमल कुहर ने कांसे का तमगा जीतकर भारत के लिए तमगों की जीत की शुरुआत की थी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर V.D. Sathisan ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए बाकायदा दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशियात समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं पुदीने के फवायद के हवाले से कुछ जरूरी बातें।
2: मौसम बदला, गर्मी की आमद आमद हुई और जैसे ही मौसम बदलता है तो बहुत सी चीजें जिंदगी में बदलती हैं। हमारा रहन सहन बदलता है, हमारे लिबास बदलते हैं, हमारा खाना पीना बदलता है। खाने में और अच्छी चीज़ें मिलेंगी गर्मी के मौसम में, बहुत सी चीज़ें आती हैं और जहां हम ज़रूरत पर जोर देते हैं पानी की, तो वहीं दूसरी चीज़ों पर, वैसे पानी या फिर जो सब्जियां हैं उनकी ज़रूरत तो हमें 12 महीने रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहिए। हजरत पुदीना आ गए हैं। अरे भाई, पुदीने की बात हो रही है, बड़ा खुशबूदार, इसको साग कहेंगे या फिर पत्तियां कहेंगे या सब्जी कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन ये हमारे खाने को न सिर्फ लजीज बनाता है, जायका देता है, बल्कि इसकी और भी कुछ फायदियत है। पुदीना गर्मी के मौसम का ख़ास एक तोहफा कह सकते हैं, एक खुशबूदार सब्जी इसे हम कह सकते हैं। ये मौसम सरमा में पैदा होती है, यानी जब सर्दी जा रही होती है तब ये पैदा होने लगती है और गर्मी आते आते ये बाजारों में आसानी दस्तयाब हो जाती है और इसकी चटनी का तो जवाब ही नहीं है, मुंह में पानी आ गया। पुदीने की चटनी लाल मिर्च के साथ, थोड़ी सी उसमें खटाई मिलाइए या थोड़ी सी इमली उसमें मिलाइए, क्या जबरदस्त जायकेदार चटनी तैयार हो जाती है। बड़े सगीर में सदियों से इसका चलन है और ये सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, पुदीना अलग से चटनी के अलावा, मतलब जब आप सलाद काटती हैं तो उसमें पुदीने के पत्ते भी आप उसको सजाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं और इसे बूटी भी कहा जाता है। और ये भी बताएं आपको कि पुदीने की कई किस्में हैं, ये खानों को खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ खुशबूदार या जायकेदार बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जो इसके अज्जा हैं उसमें कई विटामिन पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है और वो सभी कुछ इसमें मिल जाता है।

0: के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, पेट के कीड़े मर जाते हैं अगर हम इसका बाकायदा रोज़ इस्तेमाल करें तो। अगर जिगर की कमज़ोरी है यानी लीवर कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेट के दर्द में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और जब हम अगर अपने खानों में इसका बाकायदा इस्तेमाल करें तो बदहज़मी वाली जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये इंतहाई हाजिम है और खाने को हज़म होने में भी मदद करता है, दर्द में परेशानी से निजात दिलाता है। इसके अलावा कई तरह के कुछ मौसमी बुखार भी होते हैं, जैसे मौसम बदलता है तो उसके साथ कुछ वबाएँ भी आ जाती हैं, तो इस तरह की जो वबाई बीमारियाँ होती हैं ये उनका गोया तरियाक है। और ये चूर्ण के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है मौसम में, बरसात में कुछ चीज़ें इसमें मिलाकर, कुछ तरह के चूर्ण भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे काली मिर्च और या पुदीना मिला के खा लिया, और ज़ीरा या पुदीना इसको बराबर कूट लिया और उसको थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल के चूर्ण के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। और कुछ और भी इसकी खसूसियात हैं, जैसे अक्सर बरसात के मौसम में छोटे छोटे जहरीले जानवर पैदा हो जाते हैं, अगर उसने किसी इस तरह के जानवर ने डंक मार दिया तो पुदीना काटकर उसका लेप बना लीजिए और उस जगह पर लगाइए, तो ये जहर के असर को खत्म कर देता है। अगर उल्टी होने लगती है कई बार बरसात के और गर्मियों के मौसम में, तो पुदीना जो है वो उल्टियों को रोकता है, बलगम को खत्म करता है। हैजा खुदा ना खास्ता अगर हो रहा है तो वहां पर भी ये काफी फायदेमंद होता है। नाक और कान में पुदीने का रस टपकाने से नाक और कान के कीड़े मर जाते हैं, इसे उबाल कर इसका पानी पीना भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। और बस आंतों के लिए अलबत्ता ये थोड़ा सा मुज़िर है, इसलिए वो लोग जो आंतों की किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो पुदीना किसी भी तरीके से खाने से बचें, एहतियात करें, और ना ही इसको सलाद के तौर पर ना ही चटनी के तौर पर किसी भी तरह वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको आंतों की परेशानी है। तो ये थी बातें पुदीने के हवाले से जो बाज़ार में दस्तयाब है। अच्छा,
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम हरफे सुखन। आइए इस प्रोग्राम को तहे सुनते हैं गज़ल के मुख्तलिफ अंदाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू और कुछ गज़लें भी इसमें हम समाप्त करेंगे।
2: हरफे सुखन के सामईन को हमारा आदाब। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। जी हाँ, गजल का जितना रिश्ता उम्र रफ्ता यानी माजी से है, उतना ही चंग रुबाब यानी सास से भी है। शेर की वारदात और एहसासात जब मुगन्नी की दिल फरेब और दर्दंगेज आवाज में ढलते हैं तो एक ऐसा नगमे जांसोज नमुदार होता है कि जो सामईन को एक वजदानी और किसी हद तक अज खुद रफ्ता कैफियत से दोचार करा देता है। गजल की गनाइत या नगमगी ही उसकी पहचान बन जाती है और शायर के साथ साथ मुगन्नी को भी दवाम बख्शती है। आवाज के जीरो बम और साजो आवाज की आमेजिश ने ही गजल को एक आलमगीर मकबूलियत अता कर दी है। और फिर गजल का सफर भी मुतनव्वो और बड़ी हद तक जहां दीदा है। उसने अपनी तकमीलियत के लिए गली गली की खाक छानी है, कभी सूफिया की खानकाहों और तकियागाहों की जीनत बनी और तसव्वुफ और बंदो खुदा के पेचीदा रिश्तों को सुलझाने की कोशिश में लगी रही और सूफिया के लिए वसीला बनी अपनी वारदात को अवामो सालिक तक पहुंचाने का। कभी दरबारों की शान शौकत और जेब जीनत की गवाह बनी और बादशाहों और शहजादों के मुंह लगी और वहां भी अपनी जलवा सामानियां बखेरी। कभी तवायफ के कोठे पर चढ़ी और इश्क मजाजी की सरमस्तियों और छेड़छाड़ की गवाह बनी। कभी किसी आशिक की जबान से अदा हुई तो इश्क व हुस्न की बारीकियां समझाने लगी और कभी किसी फलसफी के मुंह लगी तो ज़ीस्तो कायनात के राज हाय सरबस्ता वा करने लगी। किसी रिंदे बलानोश के जाम तक पहुंची तो खुमरियात के मजामीन बयान करने लगी। गरज गजल ने बहुत खाक छानी तब इस मकाम बुलंद पर फाइज हुई कि जहां उसके मद्द मुकाबिल कोई और सिन्फ शायरी नजर नहीं आती। और जैसा कि आप जानते हैं कि गजल ने तमाम कायनात को अपनी ओट में ले लिया है और हुस्न इश्क की सतही और यकरुखी बातों से बुलंद होकर जज्बा व फिक्र और जज्बात व एहसासात के एक लामुतनाही सिलसिले को जन्म दिया है।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल तलत अज़ीज़ की आवाज़ में उमराव जान फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी खय्याम ने और बोल थे शहरयार के। और सुनना चाहा था सुवर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप सिंह ने ठाकुरवाला लोहगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां और हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोंदा ने अमरावती से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू, रामगंज, खंडवा, मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाहा था हीना सावरी, आयदल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम ने गिरडीह झारखंड से, सुरेश यादव, अंकिता अनीता यादव, सोनल प्रसाद यादव पेठन से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाहा था बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और बाबू सिंह दीवान ने मुक्सर पंजाब से, पंजाब रामटेके, शुद्ध रामटेके, श्रव्य रामटेके, यवतमाल महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, सिद्धार्थ नगर से और चंडीगढ़ से सतीश नेजा, बिमला नेजा सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाहा था सुरेश यादव ने और पेठन से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे ठिकरी मध्य प्रदेश से शबनम अकरम तबरेज़ और संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, आपार डिंगिया उत्तर प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, बागपत से, और इंद्रजीत कौर छावड़ा, सिटी छावड़ा, रविंदर सिंह छावड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, पोषण बंछोड़, चंद्रकरण और छाया बंछोड़ छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाहा था मंगल जनागल राही और रेशमी रोशनी जनागल और अंकुर जनागल पत्रोड़ा से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश पंधरपुर फुलचिन चोली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी और सुबान मुलानी, जंक्शन प्लॉट राजकोट से रघुदास कोटेजा, अंश कोटेजा, आशीष कोटेजा सुनना चाहते हैं, शास्त्री नगर बीरसर से किशन सबकाल, सबकाल विशाल सबकाल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं, अमोल मानकर, शोभता मानकर, दीपाली श्लोक महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं वेद मीदा, अलका मीदा, ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से, सभिया खानम और फरीदा बानो सुनना चाहते हैं उदयपुर से, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, निहारी नीलम बत्ता, निहारिका वंश बत्ता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे पतंग फिल्म से ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने और बोल थे राजेंद्र किशन के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहा है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, हरिपाल।

और माया कुमारी ने कुमार ने और गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी राजस्थान अजमेर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले और शमीम अहमद फूलवाले करजत बलिया मुंबई से सुनना चाहते हैं और बांदा से मोहम्मद फ़हीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और विजय सुरलकर, विधा सुरलकर, कुमकुम सुरलकर महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और अनीता सुरेश जाधव पैठन से सुनने की ख्वाहिशमंद हैं। मनमोहन रजावत, मधुर रजावत, राजी रक्षित शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से और सुनना चाहते हैं विनोद वंडालकर, वीणा वंडालकर, विविधा वंडालकर छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चकनट्टी बुलंद शहर सुनना चाहते हैं, चंदखेड़ा से आनंदराज सागर, तुरलता सागर सुनना चाहते हैं और संभल से छोटे अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। अशोक दले, सविता दले और अनिकेत दले श्रीरामपुर से सुनना चाहते हैं। इम्तियाज इमाम आतिश, तायरा परवीन आतिश और मोहम्मद आसिफ रजा गिरडी झारखंड से सुनना चाहते हैं और हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और यज्ञ पांड्या असम से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुब्रत चौधरी कलकत्ता सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं अर्पणा गोंदाने, प्रणय प्रसिद्धि गोंदाने, प्रतिभा गोंदाने राहुल नगर अमरावती से और सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बाबू डब्बू हांसी से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। उत्तम कुमार भगत, चौदह भगत, किशुताशु पाकुर झारखंड से, बाबा साहब अडोडे, चंद्र प्रभाव अडोडे जरूर से सुनना चाहते हैं।

सामीन अभी आप सुन रहे थे शगुन फिल्म से, ये नगमा मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। इसकी तर्ज बनाई थी खयाम ने और बोल थे साहिल लुधियानवी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार की आवाज़ में, जिसको

0: सामीन, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में ये नगमा। शब के 11 बज चुके हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। आइए इसी दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है बर्रे सगीर की खबरों के साथ, मैं हबीब रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए बाकायदा दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने अपनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। और एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इकतसादी मज़ाहमत को बढ़ाने और मशीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील देने के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारिजा और वफ्द के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान ताउन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। यह मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से अलग मुनाकिद हुई। इससे कबल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा SJ ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात, मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात इकतसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तजारत, टेक्नोलॉजी और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल व सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कात बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अदा करने वाला किरदार अदा करेगा। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहमत, इख्तराआत, ताउन और पायदारियत के लिए तामीर, इंसानियत को अवलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स @2.0, मज़ाहमत, इख्तराआत, ताउन और पायदारियत के लिए तामीर, इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में असलाहत के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेजी के साथ बढ़ती हुई इकतसादी शराकत दारियों में से एक को मजीद तौसी देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आला सतही तबादले ख्याल के लिए कल अबूजा भी पहुंच रहे हैं। इस तबादले ख्याल में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ्फुज़ और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी इकतसादी मसरूफियात में तेजी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तजारत माली साल 2024-25 में

100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावज कर चुकी है। यह 2022 के जामे इक्तसादी शराकतदारी के मुआहदे या CEPA के तहत मुकर्रर हदफ को मुकर्रर वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करता है। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फेहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू की जाएगी। इसे 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मरहलावार मुनाकिब किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खत्ता, चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली, नीज दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अस खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकर्रर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फेहरिस्तों के SIR में मरहला 3 में पूरे मुल्क का इहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। ECI ने तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की है कि वह हर एक पोलिंग बूथ के लिए BLAs मुकर्रर करें ताकि सियासी पार्टियों की मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। इसका मकसद यह भी है कि SIR मुकम्मल शफाफियत और सियासी जमातों की मुकम्मल शराकत के साथ मुनाकिद की जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। केरलम में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने आज तिरुवनंतपुरम में मुनाकदा मीटिंग में VT सतीशन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया है। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर रमेश चिन्नीथाला पार्लियामानी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस लीडर VT सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की है और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए बाकायदा दावा पेश किया है। तमिलनाडु में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीसामी ने आज रियासती गवर्नर विश्वनाथ आरलेकर से मुलाकात की और SP वेलुमनी के जेर क़यादत AIADMK के अरकान कानून साज असेंबली में फूट पड़ने से मुतालिक एक उजरदारी उन्हें पेश की। साबिक वजीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वह इस मामले को स्पीकर JCD प्रभाकर के साथ उठाएं। मामला यह है कि SP वेलुमनी के जेर क़यादत धड़े में AIADMK के 25 अरकान कानून साज असेंबली ने TVK सरकार को वोट दिया, जो कि TVK सरकार के खिलाफ वोट न देने के OS मनियन के जरिए जारी की गई व्हिप की खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज्यादा अफराद जां बहक हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वह फौरी तौर से जाए वकूअ पर पहुंचकर सर्वे करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा है कि वह हर 3 घंटे में मुआवजे की सूरत हाल के बारे में अपडेट फराहम करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाजाराई के बजाय तजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर ताउन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इतफाक किया कि अबनाए हुरमुस को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आज़ादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुशाइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महाजाराई के बजाय ताउन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों में इख्तलाफात से ज्यादा मुश्तरका मफादात पाए जाते हैं और उन्होंने बाहमी ताल्लुकात में एक नए बाब की जरूरत को उजागर किया। अमेरिका के सदर 3 रोज़ा दौरे पर चीन गए हुए हैं। चीन के इस दौरे पर उनके हमराह अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान में भी हैं, जिनमें नविदा के जेनसन हंग, एप्पल के टिम कोक, टेस्ला और SpaceX के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। ट्रंप के दौरे से कबल ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने बीजिंग का पहला दौरा किया था और अपने चीनी हमनसब वैंगी से मुज़ाकरात किए थे। इराकची के साथ बातचीत के बाद वैंग ने ईरान से कहा था कि वह जल्द अज जल्द अपना हुरमुस को दोबारा खोल दे। साथ ही उसने तेहरान के इस वादे की भी तहसीन की थी कि वो न्यूक्लियाई हथियार नहीं बनाएंगे, जो कि जंग खत्म करने का ट्रंप का अहम मुतालबा था। इधर अमरीकी वजीर

0: वज़ीर-ए-आज़म मार्को रूबियो ने आज चीन को मुतनब्बे किया है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक फाश गलती होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान के तई अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। एशियन सेंटर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमू खेल में अपनी काबिल जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया और मजमू तौर पर 314 किलोग्राम वजन उठाया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में वोटर फेहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर वीडी सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए बाकायदा दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने अपना हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिल इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे संगदिल फिल्म से नगमा तलत महमूद की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी सज्जाद ने और बोल थे राजेंद्र किशन के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश सुरैया की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहा है तुलसी मस्किन, चैतन्या मस्किन और रचिता मस्किन ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना सुनने का चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रमेश कामले, दिव्यानी गणेश कामले अकोला महाराष्ट्र से, और सुनना चाहते हैं कैफी आजम तबस्सुम परवीन चंडीगढ़ सहारनपुर से और चंद्रपुर से, रायगढ़ से सुधा वर्मा, दीप्ति वर्मा, प्रभा वर्मा सुनना चाहते हैं और मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली और रुखसाना खातून सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। राकेश पटेल, प्रमिला पटेल सुनना चाहते हैं राजकोट से, जालंधर से हेमा पॉल, शैलेश पॉल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और संगम बिहार रतिया मार्ग नई दिल्ली से सत्यम शिवम, राजनगर कांति निकेतन कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता सुनना चाहते हैं, लखनऊ से रानी मुकेश, रश्मि गुप्ता सुनने चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नर्मदा पार्क मंगल वेदा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, और सुनना चाहते हैं मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज़ में नगमा कमल के फूल से, जिसकी तर्ज बनाई थी श्याम सुंदर ने। हाज़िर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाज़ में, जिसको चुनना चाहा है खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आनंद राज सागर के अलावा कबीर राधानी, अनाज मंतिक राधानी और निशात राधानी कच्छ गुजरात से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाह है गुजरात से जुबेदा खातून लखानी, विहान लखानी और नूर मोहम्मद लखानी ने। और सुनना चाहते हैं अनाज मंडी जामनगर से महेश वत्सल, कपिल राय और

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شاعر فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں. اسی کے ساتھ تامل ارشاد پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: سرخیوں میں नमस्कार. सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर. हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा. गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच.
1: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई. आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट.
3: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है. इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं. बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं. भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण. यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है. ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है. मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था. इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था. 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया. हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है. आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है. दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार.

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
1: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
0: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही, मुझे लगता है, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खासतौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खासतौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है
0: जी।
2: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं, जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है, तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है, तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं, और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है, उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में है, वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
0: जी।
2: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर, उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, और जिस तरीके से

0: मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं, और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो हैं ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है, और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का, ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, और कल भी इसके बारे में जो है BRICS 20 के बारे में एक सम्मेलन होगा,
1: जी
0: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है, और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश, वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी, वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है, और पूरा जो मल्टीलेटरल सिस्टम है जो अभी, क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो
1: जी
0: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी, और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा, और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
0: जी, भारत ने तो पहले से कहा है, और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
1: जी
0: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
1: जी
0: वो ग्लोबल साउथ के देश है, वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी, और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर, उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर, एक मत होकर कुछ बात करते हैं, तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से, क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, और बाकी जो देश हैं इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा, और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
1: जी
0: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में, और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है। तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है, और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, फिर जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं, तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा
1: जी
0: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो,
1: जी
0: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे, लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
1: जी
0: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी

0: रास्ते हैं वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि उसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे यह है कि उनसे क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, और जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे। तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हो चाहे WTO वगैरह हो, तो
1: जी
0: सब जगह पे ब्रिक्स के देश क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे अगर इन सब बातों के बारे में खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्म मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं श्री कृष्ण, श्री पंडित तेजपाल सिंह और सुरिंदर सिंह की आवाज़ में राग कौशिक ध्वनि में ख्याल।

0: सामीन, अभी आप सुन रहे थे पंडित तेजपाल सिंह और सुरेंद्र सिंह की आवाज़ में राग कौशिक ध्वनि में ख्याल। इसी के साथ प्रोग्राम बज़्म मौसीकी अब ख़त्म होता है। शब के 12 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं आलमी खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने अपना हुरमुस खोले जाने पर जोर दिया। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों की 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इकतसादी मज़ाहिमत को बढ़ाने और मज़ीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील देने के लिए मिलकर काम करेगा। कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफ्द के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान ताउन को बढ़ाने और आलमी जनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। यह मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनाकिद हुई। इससे कबल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात, मुदाकरात और सफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात इकतसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तजारत, टेक्नोलॉजी और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल व सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कात बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम करने वाला किरदार अदा करेगा। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहमत, इख्तराअत, ताउन और पायदारीत के लिए तामीर। इंसानियत को अव्वलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 2.0, मज़ाहमत, इख्तराअत, ताउन और पायदारीत के लिए तामीर। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में असलाहत के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेजी के साथ बढ़ती हुई इकतसादी शराकत दारियों में से एक को मजीद तोसी देने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आला सतही तबादले ख्याल के लिए आज अबूजबी पहुंच रहे हैं। इस तबादले ख्याल में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ्फुज़ और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इकतसादी मसरूफियात में तेजी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावज कर चुकी है। यह 2022 के जामे इकतसादी शराकतदारी के मुआहदे या CEPA के तहत मुकर्रर हदफ को मुकर्रर वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करना है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहमी तजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने कल बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाजाराई के बजाय

भारत टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर ताउन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुस को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आजादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुशाइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों ने खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महाजराई के बजाय ताउन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों में इख्तलाफात से ज्यादा मुश्तरका मफादात पाए जाते हैं और उन्होंने बाहमी ताल्लुकात में एक नए बाप की जरूरत को उजागर किया। अमेरिका के सदर 3 रोजा दौरे पर चीन गए हुए हैं। चीन के इस दौरे पर उनके हमराह अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान भी हैं, जिनमें इन्वीडिया के जैनसन हॉन्ग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क, ब्लैक रॉक के लैरी फिन शामिल हैं। ट्रंप के दौरे से कबल ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने बीजिंग का पहला दौरा किया था और अपने चीनी हममनसब वैंगी से मुजाकरात किए थे। इराकची के साथ बातचीत के बाद वैंग ने ईरान से कहा था कि वह जल्द अज जल्द आबनाए हुरमुस को दोबारा खोल दे। साथ ही उसने तेहरान के इस वादे की भी तहसीन की थी कि वह न्यूक्लियाई हथियार नहीं बनाएंगे, जो कि जंग खत्म करने का ट्रंप का अहम मुतालिबा था। इधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज चीन को मुतनबह किया है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक फाश गलती होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान के तई अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फेहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू की जाएगी। इसे 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरहलावार मुनाकिद किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खत्ता, चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली, नीज, दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अस खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकर्रर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फेहरिस्तों के SIR में मरहला 3 में पूरे मुल्क का इहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं हैं। इन 3 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मर्दमशुमारी के मरहला 2 की तकमील और बालाई इलाकों या बर्फबारी वाले इलाकों में मौसम पर गौर करने के बाद इन तीनों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वोटर फेहरिस्त की नजरसानी के अमल में एक अहम कदम है। इसका मकसद मुल्क भर में अपडेटेड और दुरुस्त इंतखाबी फेहरिस्तें तैयार करना है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कल कहा कि खुद कफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौइयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजिमी हैसियत रखते हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कवच के 3rd एडिशन के इफ्तिताही इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। वजीर मौसूफ ने खुद कफालत को न सिर्फ एक इक्तसादी हदफ बल्कि एक क्लीदी जरूरत भी करार दिया। उन्होंने वजाहत की कि अगर कोई मुल्क अहम तरीन दिफाई सलाहियतों के लिए दूसरों पर ज्यादा ही मुनहसर हो तो वह बहरान के दौर में जदपजीर रहता है। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमूई खेल में अपनी काबिल जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया और मजमूई तौर पर 314 किलोग्राम वजन उठाकर और क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम की जबरदस्त कोशिश के साथ दोनों ही मुकाबलों में भारत को 3रा मकाम दिलाया। अजीत की इस कोशिश से इस चैंपियनशिप में भारत को 3 तमगे हासिल हो गए। पीर को खवातीन के 48 किलोग्राम के जुमरे में कोमल कोहर ने कांसे का तमगा जीतकर भारत के लिए तमगों की जीत की शुरुआत की थी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
وزیر

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने अपनाए हुरमुस खोले जाने पर जोर दिया। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं श्री कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया हुआ रागनाथ भैरव।

सामिने भी आप सुन रहे थे भाई बहन फिल्म से नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी एन दत्ता ने। आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म बेकसूर से, जिसकी तर्ज बनाई है अनिल विश्वास ने और बोल हैं आरजू लखनवी के।

0: रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा, मैं रोए मरूंगी चले जई हो बेदर्दा।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

सामीन अभी आप सुन रहे थे बावरे नैन फिल्म से ये नगमा मुकेश और गीता रॉय की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी रोशन ने और बोल थे केदार शर्मा के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज़ में।

0: बोले।
1: सामीन, अभी आप सुन रहे थे भंवरा फिल्म से नगमा केएल सेगल की आवाज़ में। इसी के साथ प्रोग्राम आखिर शब अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने अपना हुरमुस खोले जाने पर जोर दिया। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इकतसादी मज़ाहमत को बढ़ाने और मजीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील देने के लिए मिलकर काम करेगा। कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफ्द के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान ताउन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनाकिद हुई। इससे कबल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात इक़्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तजारत टेक्नोलॉजी और आबो हवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्ल व सूरत दे रहे हैं और इस नो की तवक्कात बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अदा करने वाला किरदार अदा करेगा। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहमत इख्तराआत ताउन और पायदारियत के लिए तामीर, इंसानियत को अव्वलियत देने और ब्रिक्स अवाम मरकूज होने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। आज दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 2.0 मज़ाहमत इख्तराआत ताउन और पायदारियत के लिए तामीर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेजी के साथ बढ़ती हुई इकतसादी शराकत दारियों में से एक को मजीद तोसी देने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आला सतही तबादला ख्याल के लिए आज अबू ज़हबी पहुँच रहे हैं। इस तबादले ख्याल में तजारत सरमायाकारी तवानाई के तहफ्फुज और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी इकतसादी मसरूफियात में तेजी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावज कर चुकी है। ये 2022 के जामे इक्तसादी शराकत दारी के मुआहदे या CEPA के तहत मुकर्रर हदफ को मुकर्रर वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करना है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहिमी तजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने कल बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने आलमी कशीदगी के बावजूद महाजराई के बजाय तजारत टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर ताउन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि अबनाए हुरमुस को हर हाल में खुला रहना चाहिए ताकि तवानाई की आज़ादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुशाइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महाजराई के बजाय ताउन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों में इख्तलाफात से ज्यादा मुश्तरक मफादात पाए जाते हैं और उन्होंने बाहिमी ताल्लुकात में एक नए बाब की ज़रूरत को उजागर किया। अमेरिका के सदर 3 रोजा दौरे पर चीन गए हुए हैं। चीन के इस दौरे पर उनके हमराह अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडर भी हैं, जिनमें एनवीडिया के जेनसेन होंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। ट्रंप के दौरे से कबल ईरान के वजीर खारजा अब्बास राक्ची ने बीजिंग का दौरा किया था और अपने चीनी हमनसब वैंगी से मुजाकरात किए थे। राक्ची के साथ बातचीत के बाद वैंग ने ईरान से कहा था कि वो जल्द अज जल्द आबनाए हुरमुस को दोबारा खोल दे। इधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने चीन को मुतनबह किया है कि ताइवान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल एक फाश गलती होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान के तई अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फहरिस्तों पर खसूसी नजरदानी SIR मरहला 3 शुरू की जाएगी। इसे 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरहलावार मुनक्किद किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खत्ता, चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली, नीज, दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात आज खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकर्रर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फहरिस्तों के SIR में मरहला 3 में पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं हैं। इन 3 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मर्दमशुमारी के मरहला 2 की तकमील और बालाई इलाकों या बर्फबारी वाले इलाकों में मौसम पर गौर करने के बाद इन 3 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की नजरसानी के अमल में एक अहम कदम है। इसका मकसद मुल्क भर में अपडेटेड और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करना है। ECI ने तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की है कि वो हर एक पोलिंग बूथ के लिए BLAs मुकर्रर करें ताकि सियासी पार्टियों की मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। इसका मकसद ये भी है कि SIR मुकम्मल शफाफियत और सियासी जमातों की मुकम्मल शराकत दारी के साथ मुनाकिद की जाए। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुद कफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौइयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजमी हैसियत रखते हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कवच के 3रे एडिशन के इफ्तिताह के इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायण ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमुई खेल में अपने काबिल जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया और मजबूती तौर पर 314 किलोग्राम वजन उठाकर और क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम की जबरदस्त कोशिश के साथ दोनों ही मुकाबलों में भारत को 3रा मकाम दिलाया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस खोले जाने पर जोर दिया। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का 3रा मरहला शुरू होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनसे हर 3 घंटे में मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाज

0: Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala yesterday. Chasing 201 for victory, Mumbai Indians overhauled the target with 6 wickets in hand and 1 ball to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। आई श्रोताओं, आपको बता दें अगले आप कौन कौन से लाइव शोज सुन सकते हैं, यानी कि फिल्म गीत से भरा गीत का कार्यक्रम 1:10 होने को है। अब वक्त है गीत सुनहरे गोल्डन एरा के फिल्म संगीत, साथ ही साथ 2:10 पर आप सुनेंगे गीत बहार फिल्म म्यूज़िक कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। गीतों के उन लम्हों के साथ साथ उन शब्दों को भी पिरो लिया है जिससे गीत और समय और माहौल सारा कुछ खुशनुमा हो जाए। वो आवाज़, वो सुर, वो शब्द जो गीतों में पिरोया गया, जो पुराने गीतों में मिलते हैं, वो और कहाँ।

सरस्वती चंद्र फिल्म से इस गीत को आपने सुना, बेहद खूबसूरत गीत और यूँ कहें तो बेहतरीन गीत। उषा मंगेशकर की आवाज़ में वो जादू था जिसे वो हर जगह बिखेर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक गीत ऐसा गाया जो लता मंगेशकर ने उसकी बात उसे फिर से गाया। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

जब मोहब्बत होती है तब जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी सबसे अहमियत रखती है। और ये लाइनें हम अगर बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कोई उसे खूबसूरत तरीके से लिख दे और कोई उससे भी खूबसूरत तरीके से गा दे तो फिर ये लाइन यूं बन गई।

और फिर खुश रहने की बात जब आती है, और जब अपने दिल की बात हम कहते हैं, कहीं कहीं तो कह देते हैं, और

कहीं कहीं दिल की बात बोलने में हम शर्मा जाते हैं, ये कहीं कहीं ही होता है, सब जगह नहीं। जी हाँ, कई ऐसे गीत बने हैं जिसमें अपनी दिल की बात खुलेआम कहा गया है, और कहीं कहीं दिल की बात बोलने में जो शर्म है, जो हया है, वो शब्दों के इस तरीके से पिरोया गया है शब्दों में, बेहतरीन लगने लगा।

मोहब्बत में तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, और जब मोहब्बत को मोहब्बत ही कह दे कि तुम्हारी मोहब्बत के क्या मिसाल दूँ, तो ऐसे गीत को क्या कह सकते हैं जहाँ हर शब्द में मोहब्बत ही है।

फिर क्या है जब इतना प्यार और मोहब्बत में और ना मिले, तो फिर दिल चाहता है कि निगाहें मिला ही लो।

बेहतरीन से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस गीत में था। ये गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था। कहते हैं कि जब यादें अंगड़ाई लेती है तब कुछ भी कर लो कहीं मन नहीं लगता, और याद आने से दूर वाले भी परेशान होते हैं जिनका दिल से दिल की तार जिनकी जुड़ी होती है। यादों का एक सिलसिला इस गीत के साथ शुरू करते हैं।

या दिल ने फिर याद किया, तो फिर जब दिल याद करता है तो ये जिया शांत कहाँ रहता है। जी हाँ, दिल फिर झूमने लग जाता है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

और जब प्यार को ये समा मिल जाए जहाँ सिर्फ प्यार हो, तो फिर मोहब्बत कैसे नहीं होगी। गीतों में मोहब्बत के हर एक बोल में उसकी झलक मिलना कोई आम बात नहीं है, वो कोई खास ही है जो मोहब्बत का दीवाना और मोहब्बत में ही डूब जाना जानता है।

0: मोहब्बत के इस राह में चलते चलते हम लोग भी उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर मोहब्बत की इन राहों को रोकना ही पड़ेगा। जी हाँ, वक्त हो चला है कार्यक्रम को ख़त्म करने का। मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। आपके लिए आखिरी रंगवा, नमस्कार।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।
2: एक बात बताइए।
3: क्या
2: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
3: सपनों में देखा होगा।
2: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। वहीं IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, न्यूज रेड बाय RS रघु।

0: और इसी गीत के साथ आज का ये गीत बहार फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers Meeting External

बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह के स्वर में, और ये जो गुलूकार थे यानी कि जो रचना थी ये सुरेंद्र मलिक गुमनाम की, और संगीत दिया था जगजीत सिंह ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गज़ल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के स्वर में।

AIRLIVE न्यूज 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत, और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति फिल्म नाम से, कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक गजल, कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: जगजीत सिंह की इसी गजल के साथ में ये आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

0: और इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं अमृता वर्षिणी अम्मू का गायन।

0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमरूदा वर्षिनी अम्मू की स्वर प्रस्तुति। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026। सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोता ये सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा अश्वथासन और तितली क्रिया। 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, आप सुनेंगे मधुप मुदगल का गायन, राग होगा रामकली। सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्षितिज माथुर के भजन। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

8:45 पर सुबह 86 संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित हरीश तिवारी के का गायन, राग होगा असावरी तोड़ी। 9:15 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत आप सुनेंगे एक वार्ता जिसका विषय होगा महात्मा गांधी के महिलाओं की शिक्षा पर विचार। वार्ताकार होंगे रीमा यादव। 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक। और 10:10 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद आप सुन सकेंगे।

दिन में 11:10 पर कार्यक्रम होगा सब रस। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में आप सुनेंगे प्रतीक चौधरी का सितार वादन। समय रहेगा 11:30। दिन में 12:10 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन महिला कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर शक्ति कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से।

दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, जिसमें आज की कलाकार होंगी माधुरी दीक्षित। उर्दू मजलिस कार्यक्रम का समय रहेगा 3:30। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।

मांस खाने करने वाले श्री दाखिल करता छोटी ले इनका ब्राह्मण पूरे दादू ना प्यायो साथ कूड़ी रात कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म तनु का डेरा दूर ना करने पर पूर मत्थे टिका तेर तो टिका खाए हाथ छुरी जत कसाई निर्बत्र रह प्राम ले ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौक से ना